हिंदी फिल्मों में बतौर चरित्र अभिनेता छाए रहे। इन्होंने 1960 के दशक से सन 2000 तक के दशक तक 400 से अधिक फिल्मों में सहायक अभिनेता की भूमिका निभाई। वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार थे जिन्होंने हास्य अभिनेता, संजीदा किरदार और पुलिस वाले की भूमिकाएं निभाई। सादगी और शानदार अभिनय के लिए वो मशहूर थे। वो फिल्मों में अक्सर लाला, दुकानदार या हास्य भूमिकाएं निभाते थे।

0: नहीं बन गया।
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें
4: 0542227658
5: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
6: पढ़ाई पूरी करने के बाद यूनुस परवेज ने दिल्ली में थिएटर की तरफ रुख किया और दिल्ली में बेगम कुत्सिया जैदी और हबीब तनवीर जैसे दिग्गजों के साथ थिएटर में भी काम किया। इनका बॉलीवुड सफर शुरू हुआ सन 1964 में। ये 1964 में मुंबई आ गए और यहां आकर इन्होंने इप्टा से जुड़ गए। यूनुस परवेज ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1968 में रिलीज फिल्म हसीना मान जाएगी से की थी। अपने फिल्मी सफर में इन्होंने कई यादगार फिल्में की, जिनमें गर्म हवा सन 1974 में रिलीज थी, 1975 में रिलीज्ड फिल्म दीवार, 1978 में फिल्म रिलीज जो हुई थी वो त्रिशूल थी, और 1979 में गोलमाल, और 1987 में मिस्टर इंडिया। उन्होंने आखिरी फिल्म की सन 2005 में बंटी और बबली।

0: आकाशवाणी वाराणसी से अभी आप सुन रहे हैं मधुरिमा कार्यक्रम। मधुरिमा कार्यक्रम के शेष गीत आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: नशे का शौक कहीं आपकी

दोस्तों, यूनुस परवेज का जन्म 3 सितंबर 1936 को गाजीपुर जिले में हुआ था। इनके पिता यूपी पुलिस में एक बड़े अधिकारी थे। यूनुस परवेज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उर्दू में एमए की डिग्री हासिल की थी। अपने कॉलेज के दिनों में इन्हें डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और फिराक गोरखपुरी जैसे दिग्गज साहित्यकारों से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला था। फिल्मों के अलावा इन्हें राजनीति में भी गहरी रुचि थी। एक बार इन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था।

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे

यूनुस परवेज का निधन 11 फरवरी 2007 को 71 वर्ष की अवस्था में मुंबई में हुआ। वो मधुमेह से ग्रसित थे। यूनुस परवेज एक बेहतरीन फिल्म अभिनेता थे जिन्होंने न सिर्फ रंगमंच पर अपने अभिनय का जादू बिखेरा बल्कि सिनेमा में भी अपने अभिनय के रंग दिखाए।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। जिले की हलचल थोड़ी देर में हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और बिजनौर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का।
2: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आगरा में जगह जगह योग शिविर लगाए गए। विश्व प्रख्यात ताजमहल के पार्श्व में योगा कर निरोग रहने का दुनिया को संदेश दिया गया। वहीं आयुष विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम में योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर योगा अभ्यास करते हुए सभी को करो योग रहो निरोग का देश और दुनिया को संदेश दिया। इस दौरान पश्चिम बंगाल के कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग दिवस पर दिए गए संबोधन का सजीव प्रसारण देखा और सुना गया। योग शिविर में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं, सरकारी अर्ध सरकारी आयुष विभाग के अधिकारी कर्मचारी और बड़ी संख्या में मौजूद शहरवासियों को योगाचार द्वारा योग के विभिन्न आसन कराए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और पूरी दुनिया हमारी विद्या और विद्या का अनुगमन कर रही है जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित करती है।
3: करें योग रहे निरोग और इस बार की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। और मेंटल हेल्थ के समय विश्व की बहुत बड़ी समस्या है, तो ये शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य में योग का बहुत बड़ा योगदान है।
2: उन्होंने कहा कि योग तनाव को दूर करता है और एकाग्रता पैदा करने के साथ साथ अनेक बीमारियों से भी बचाता है। बीते दिनों आगरा में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में ब्रिक्स इंडिया 2026 के तहत पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरे ब्रिक्स एमएसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक सम्पन्न हुई। पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम की बैठक में केंद्रीय लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी, प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री भूपेन्द्र चौधरी सहित ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबिया, कजाकिस्तान, मलेशिया सहित 21 देशों के ब्रिक्स सदस्य और ब्रिक्स सहयोगी देशों की नीति निर्माता, उद्योगपति, उद्यमी और अन्य प्रमुख हितधारकों ने भाग लेकर वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने संबोधित करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था और कमजोर वर्गों के उत्थान में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में लगभग 8.6 करोड़ एमएसएमई इकाइयां हैं जो 38 से 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। वहीं प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन केवल संवाद का अवसर नहीं है बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच परस्पर सहयोग, तकनीकी
4: स्वच्छता अभियान को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सभी विभिन्न स्थानों पर जाकर के इस अभियान के माध्यम से एक संदेश समाज में देने का कि पूरा समाज जब किसी अभियान का हिस्सा बन जाता है तो वो अभियान एक आंदोलन बन जाता है।
2: आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शमशाबाद के प्रवेश द्वार पर महाराणा प्रताप की 15 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा के अनावरण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शमशाबाद के पी इंटर कॉलेज मैदान पर आयोजित किसान, जवान, महिला स्वाभिमान रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप ने मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके और अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए हल्दीघाटी को दुश्मनों के खून से लाल कर दिया था। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप की वीरता और उनका शौर्य किसी दरकार और इतिहासकार का मोहताज नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है।
5: हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ भारत बोलता था, भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज हमारा भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोल कर सुनती है, भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत नहीं है।
1: आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का।
6: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर के विकासखंड अफजलगढ़ स्थित ग्राम आलमपुर गावड़ी में आयोजित भव्य कार्यक्रम

0: क्रम में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज के वंचित, शोषित एवं जरूरतमंद वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा पाकिस्तान से स्थापित 1645 परिवारों तथा 50 पूर्व सैनिकों एवं लीज धारकों को भूमि अधिकार पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि भूमिधरी अधिकार मिलने पर भारतीयों को न केवल भूमि पर वैधानिक स्वामित्व प्राप्त होगा बल्कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी सुगमता से मिल सकेगा। कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूहों तथा अन्य योजनाओं के चयनित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, डेमो चेक एवं प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा चयनित 11 प्रेरणादायी लाभार्थियों को मंच पर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों ने बताया,
1: जो हमारे जमीन में ट्रेनिंग दो में थी, अब एक में हो गई है, हमें पूर्ण भूमिधरी का अधिकार मिल गया है, इसमें हम लोन ले सकते हैं, दे सकते हैं, हमारा स्वामित्व पूरा हो गया। सरकार ने हमें वो प्रमाण पत्र दिए और हमें खतौनी दी है, हम उसका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
0: मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित विदुर प्रेरणा कैफे तथा अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब, किसान, महिला, युवा एवं कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने लाभार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनने तथा सरकारी योजनाओं का सदुपयोग कर अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर कार्य करते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है। विभाजन विभीषिका के शिकार विस्थापितों को भूमि आवंटन के मालिकाना अधिकार के अभिलेख पत्र प्रदान करने से पूर्व उन्होंने विभिन्न विभागों के तत्वाधान में लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लगाई गई बिजनौर में 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का भव्य शुभारम्भ किया गया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तारिक मसूद, जिला अध्यक्ष भाजपा भूपेंद्र चौहान तथा जिलाधिकारी जसजीत कौर की उपस्थिति में सुशासन को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इंदिरा बाल भवन में आयोजित विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि तारिक मसूद ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार गरीब, किसान, महिला, युवा और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा जनपद की विकास परक योजनाओं पर आधारित विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के जरिए बिजनौर जिले के पारंपरिक स्वादों को न केवल नई पहचान मिलने जा रही है बल्कि इससे जुड़े छोटे और मझोले कारोबारियों के दिन भी बहुरने वाले हैं। एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर अब एक जिला एक व्यंजन योजना के अंतर्गत बिजनौर के 4 प्रमुख स्थानीय उत्पादों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत अब इन व्यंजनों को तैयार करने वाले स्थानीय निर्माताओं को सरकार की तरफ से भारी अनुदान और आसान किस्तों पर ऋण की सुविधा मिलेगी। जिले में प्रमुख व्यंजनों को राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने के लिए प्रशासन ने 4 खाद्य पदार्थों का चयन किया है। धामपुर की सिंगाड़े की कचरी, नजीबाबाद की गजक, सोन पापड़ी और बतीसा पारंपरिक रूप से तैयार होने वाला एक मीठा व्यंजन है जो इस सूची का मुख्य हिस्सा है। अमित कुमार, उपायुक्त उद्योग ने बताया, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आवेदकों को ऋण सुविधा के साथ भारी अनुदान दिया जा रहा है। अमित कुमार, उपायुक्त उद्योग ने बताया,
2: परंपरागत मिष्ठान है या कुछ ऐसे व्यंजन है जो अभी तक लोकल लेवल तक ही सीमित थे, उसी जनपद तक सीमित, अब इस स्कीम से उनकी पहचान प्रदेश भर में और देश भर में या इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने का सरकार का मुहिम है।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: मीडियम वेव 241.5 मीटर, यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। श्री परमू उर्फ राम सखा पुत्र श्री राम शिरोमणि ने ग्राम परसिया मुड़पेली थाना हलिया जनपद मिर्जापुर से हमें सूचना दी है कि उनकी पुत्री शिवानी दिनांक 6 अप्रैल 2026 दिन 2:30 बजे से कहीं लापता है। शिवानी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र करीब 18 वर्ष, कद 5 फीट, इनका चेहरा लंबा है, रंग गोरा है और दोहरा बदन है। इनकी आंखों का रंग काला है और बाल लंबे हैं। इन्होंने छींटदार ऑरेंज कलर का फ्रॉक, सफ़ेद सलवार पहनी है और इन्होंने पैरों में सफ़ेद जूती पहने हैं। शिवानी पुत्री श्री परमू के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया थाना हलिया जनपद मिर्जापुर से संपर्क करें। श्री तेजबली ने ग्राम गोपालपुर थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर से हमें सूचना दी है कि उनकी पुत्री नेहा चौहान दिनांक 15 मार्च 2026 शाम 3 बजे से कहीं लापता है। नेहा चौहान के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 18 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, इनका रंग गेहुआ है, चेहरा गोल है और एक गहरा बदन है। नेहा चौहान के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर से संपर्क करें। श्री सतीश कुमार ने ग्राम गड़ौली थाना कछवा जनपद मिर्जापुर से हमें सूचना दी है कि उनकी पुत्री किरण बिंद 9 अप्रैल 2026 सुबह 9:30 बजे से कहीं गुमशुदा है। किरण बिंद के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 23 वर्ष, कद 5 फीट, इनका रंग गेहुआ है, चेहरा लंबा है और एक गहरा मजबूत जिस्म है। इनकी आंखों और बालों का रंग काला है और इनके लंबे काले बाल हैं। इन्होंने काले रंग की जीन्स और काले रंग की कुर्ती पहनी है और पैरों में सफेद चप्पल पहनी है। किरण बिंद पुत्री श्री सतीश कुमार के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया थाना कछवा जनपद मिर्जापुर से संपर्क करें। खोए हुए व्यक्ति का नाम किरण बिंद है। श्री दरोगा बिंद पुत्र श्री रामप्रीत बिंद ने ग्राम भोलापुर थाना धीना जनपद चंदौली से हमें सूचना दी है कि उनकी पुत्री कुमारी रिंजू दिनांक 16 अप्रैल 2026 से कहीं लापता है। कुमारी रिंजू के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 15 वर्ष, कद 5 फीट, इनका रंग गेहुआ है और चेहरा लंबा है। इनके सर पर घने बाल हैं और आंखों का रंग काला है। इन्होंने नीले रंग का सलवार और सफेद रंग का फ्रॉक पहना है। कुमारी रिंजू के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया क्षेत्राधिकारी सकलडीहा जनपद चंदौली से संपर्क करें। श्री शिवनाथ यादव ने ग्राम गोपालपुर थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर से हमें सूचना दी है कि उनकी पुत्री अनामिका दिनांक 15 मार्च 2026 दिन 3 बजे अपनी सहेली नेहा चौहान पुत्री तेजबली ग्राम बिशुनपुरवा थाना इलिया जनपद चंदौली के साथ कहीं गुमशुदा है। अनामिका पुत्री श्री शिवनाथ यादव के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 19 वर्ष, कद 5 फीट, इनका रंग गोरा है, चेहरा गोल है और एक गहरा मजबूत जिस्म है। इनकी आंखों का रंग काला है और बाल काले और लंबे हैं। इन्होंने भूरे रंग की जीन्स और लाल रंग का टॉप पहना है और पैरों में सफेद जूते पहने हैं। कुमारी अनामिका पुत्री श्री शिवनाथ यादव के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर से संपर्क करें। कोई भी व्यक्ति का नाम कुमारी अनामिका है।

0: अभी आप खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 होने वाले हैं। उर्दू प्रोग्राम थोड़ी देर

ईमान और सच्ची सहाबियत न थी। यजीद ने बाप की तारीख को दोहराते हुए इमाम हुसैन के छोटे छोटे बच्चों पर सात मुहर्रम से पानी बंद कर दिया ताकि एक बूंद पानी भी खैया में हुसैनी में न पहुंच सके।

अल्लाह अल्लाह, रोजे आशूरा नमुदार हुई। पहला तीर दुश्मन यजीदी फौज की तरफ से खय्याम हुसैनी पर लगा। आगाज जंग हो गया। एक एक करके तमाम अंसार, दोस्त, भाई, भतीजे, भांजे, बेटे शहादत जाम पीते रहे। वो वक्त भी आ गया कि जब मर्दों में फकत आबिद बीमार बचे जो गश में थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी रुख्सत के लिए खैमे में आए। सैयद सज्जाद ने गश से आंखें खोली, पूछा, बाबा क्या हुआ? इमाम ने फरमाया, सज्जाद, मर्दों में सब के सब शहीद हुए, सब ने शहादत का जाम नोश फरमाया, अब मर्दों में फकत तुम बचे हो। सैयद सज्जाद ने पूछा, क्या आशकिया खैमों में आ गए? इमाम सैयद सज्जाद को गैज आ गया और आपने मैदान जाने का इरादा किया। इमाम हुसैन ने फरमाया कि सज्जाद, तुम ही इमाम वक्त हो, अब सब कुछ तुम्हारे हवाले है। इस इस्लाम को बचाना है, सब्र करो। तुमको माँ बहनों खुबियों को सरे दरबार साथ में जाना है, इस पर भी तुमको सब्र करना है और सजदे शुक्र अदा करना है।

सर झुक गया फलक का, ये औजे जमी हुआ, खुर्शीद महवे हुसने हुसैन।

जिससे अर्श वो दुर्रे नजफ मिले। अब्बास ने कहा कि मेरा फख्र है ये काम, बीवी तुम्हारे बाप का अदना हूं मैं गुलाम, दी तुमने आबरू मुझे ऐ दुख्तरे इमाम, अब हो गया जहां में बहिश्ती हमारा नाम।

ये बात बाग उठाई समंद की, सूरत बदल गई फरसे सर बुलंद की, छलबल हरन की तेज परी थी परंद की, सूरत बलाएं लेती थी हर जोड़ बंद की, बिजली चमक के छुप गई पारा तड़प गया, और जंगल में यूं उड़ा के चिकारा तड़प गया, कदम जमी पे न रखता था ना से, बिजली को खौफ क्या है नशेबो फराज से, चालाकियां दिखाता था किस इम्तियाज से, उड़ता था पर सदा न निकलती थी सांस से, राकिब वो हैं जो फर्क दो आलम के ताज हैं, घोड़ा भी जानता है कि नाजुक मिजाज हैं, मतलब मुनाफिकों के जो हैं मुलतवी रहें, या रब तेरे हुसैन के बाजू कवी रहें, तैगे खिंची लिए हुए भागे जो अहले शर, कटकर किसी का हाथ गिरा और किसी का सर, तलवार यहां पड़ी थी किसी की तो वहां पसर, बरछी थी इस शकी की तो उस नहस का जिगर, ये जंग थी कि हश्र कोई जानता न था, बेटे को बाप खौफ से पहचानता न था, पढ़ कर रजज अली ये वली का पेसर बढ़ा, गोया शिकार खेलने को शेर नर बढ़ा, दरियाए कहरे खालिक जिन्नो बशर बढ़ा, बहरे नबर्द मालिक फतहो जफर बढ़ा, और तड़पा जो रख्श बर्क निगाहों से गिर गई आमद खुदा के शेर की।

कि खल्क से भाई गुजर गया, बाजू हमारा थामने वाला तो मर गया। इन्ना लिल्लाह।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार थीं महुआ बैनर्जी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

जावेद अली, शंकर महादेवन और अलीशा शेनॉय की आवाज़ में अभी आपने फिल्म बंटी और बबली का एक गीत सुना। आइए अब सुनते हैं फिल्म मिस्टर नटवरलाल से, आवाज़ लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार राजेश रोशन।

ये आवाज़ है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई, गीतकार भरत व्यास, संगीत दिया है वसंत देसाई ने।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने फिल्म गूंज उठी शहनाई का एक गीत सुना। गीतकार थे भरत व्यास, संगीत दिया था वसंत देसाई ने। ये गीत हमने लिया है फिल्म मिली से। आवाज़ लता मंगेशकर और साथियों की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने।

यह आवाज है किशोर कुमार की। फिल्म का नाम कटी पतंग, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म मशाल से। आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीतकार हैं जयदेव, संगीत दिया है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म मेरी जीवन साथी से। आवाज किशोर कुमार की, गीतकार हैं मजरू, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को आइए अब सुनते हैं फिल्म सरगम के लिए। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर और किशोर की आवाज में आइए अब सुनते हैं फिल्म अवतार का गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने फिल्म आनंद का गीत सुना। गीतकार थे गुलजार और संगीत दिया था सलील चौधरी ने।

ये गीत हमने लिया है फिल्म हिमालय की गोद से। आवाज मुकेश की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

मुकेश के गाए फिल्म हिमालय की गोद के इसी गीत के साथ कार्यक्रम झंकार समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा, यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वहीं हमारा साथ।

फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को स्वस्थ श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज जिन फिल्मों के गीत सुनने के लिए आप हमें संदेश भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, वो फिल्मों के नाम है अदालत, सुनैना, एक दूजे के लिए, खानदान, हम दोनों और आहिस्ता आहिस्ता। इन फिल्मों के गाने सुनने के लिए आप हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905519981। और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अदालत फिल्म के इस प्यारे से गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। गीत गुलशन बावरा का है, संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे अदालत फिल्म का, जिसे लिखा था गुलशन बावरा ने, संगीत तैयार किया था कल्याण जी आनंद जी ने, और इस गाने के लिए हमें फरमाइश भेजी आप सभी श्रोताओं ने। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल, गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से SP जायसवाल, डिम्पल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल का संदेश सबसे पहले हमें प्राप्त हुआ। इसी गाने को सुनना चाहा मजनू का टिल्ला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माहे मलिक ने। छत्रपति संभाजी नगर से हमें संदेश भेजा राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती

शीतल राजेश, आपने भी इसी गाने के लिए हमें फरमाइश भेजी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से इस गीत को सुनना चाहते थे टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर रमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का संदेश प्राप्त हुआ। इसी गाने को सुनना चाहते थे ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, आयान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। इसी गाने के लिए संदेश भेजा आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां ने। इसी गाने को सुनना चाहा ग्राम पंचायत काले गांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख और कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी हर्षिता देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख ने भी हमें यहीं से संदेश भेजा। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से इस गाने को सुनना चाहते थे अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर, आकर्ष राजभर। भोपाल राजस्थान से इस गाने को सुनना चाहा धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार ने। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरुशब्द सिंह राहुल, आप सभी ने इस गाने को पसंद किया। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से इस गाने को सुनना चाहते थे तुलसी मस्कीन, वीणा मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, आप सभी ने इस गाने को पसंद किया। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा का संदेश हमें प्राप्त हुआ। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है सुनैना, आवाज यशुदास की, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

यशुदास की आवाज में अभी आप सुन रहे थे सुनैना फिल्म का ये प्यारा सा गीत। गीत और संगीत यह था रविंद्र जैन ने, और इस गाने को सुनना चाहते थे आप सभी श्रोता। छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोटके, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोटके, वैष्णवी घोटके, गायत्री घोटके और यज्ञेश घोटके। इसी गीत को सुनना चाहते थे गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबूरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल और सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल और देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल ने इस गाने को पसंद किया। इसी गाने के लिए संदेश भेजा हेमंत गौतम, प्रकाश गौतम, छोटी छाया रानी, आप सभी ने हमें संदेश भेजा महाकाली स्थान नवली गाजीपुर से। इसी गाने के लिए संदेश प्राप्त हुआ गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष और दीपक, आप सभी का। अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके मम्मी पापा ने हमें संदेश भेजा नारी पचदेवरा गाजीपुर से। नेहरू चौक पैठड़ से हमें संदेश भेजा डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, आप सभी का संदेश प्राप्त हुआ। आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल ने हमें संदेश भेजा। मेरठ कैंट से इस गाने को सुनना चाहते थे दिग्दर्शन और कविता गौड़। इसी गाने के लिए संदेश प्राप्त हुआ बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव।

हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान। नलेश्वर नगर नरबेल महाराष्ट्र से इस गाने को पसंद किया पीएस नवाकर, निर्मला और विशाल ने। मलकापुर महाराष्ट्र से सोपान तांबड़े, नारायण इंगले और आशीष मोहकर ने। इसी गाने को सुनना चाहते थे धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। दत्रेगी छत्तीसगढ़ से इस गाने को पसंद किया हीरा मणि वर्मा और पारस मणि वर्मा ने। गुरजीत सिंह नगर पंचायत बिलसांडा पीलीभीत से हमें संदेश भेजा आपने, गुरजीत सिंह ने। इसी गाने के लिए हमें फरमाइश भेजी मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर ने। हरजिंदर छिंद्रा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता का संदेश प्राप्त हुआ गांव नथाना पंजाब से। इसी गाने को सुनना चाहते थे बेंजो मास्टर सुनील यादव, शिव कुमार यादव, बेबी तनिष्का यादव और नौबत यादव। आप सभी ने हमें संदेश भेजा अमोड़ा केशकाल छत्तीसगढ़ से। इसी गाने को सुनना चाहते थे पद्मा टॉकी नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु ताशु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद। इसी गाने के लिए संदेश भेजा संदीप मक्कड़, जोगिंदर पाल मक्कड़, अनु मक्कड़, किरण मक्कड़, बबलू मक्कड़। आप सभी ने हमें संदेश भेजा पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से। इसी गाने के लिए संदेश प्राप्त हुआ शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन। आप सभी ने जगह का नाम नहीं लिखा, अगली बार जब लिखें तो जगह का नाम भी जरूर लिखें। गांव चौहल्दा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और कमल साहनी ने इस गाने को सुनना चाहा। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से इस गाने को पसंद किया रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू ने। इसी गाने के लिए हमें संदेश प्राप्त हुआ कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक। इसी गाने के लिए संदेश प्राप्त हुआ गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गाना, फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए। आवाजें लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का। आइए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

एक दूजे के लिए इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में शब्द रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस गाने को पसंद किया आप सभी श्रोताओं ने। विशुंधरी घोरावल सोनभद्र से सूर्यभान सिंह का व्हाट्सएप संदेश हमें प्राप्त हुआ, इसी गाने को सुनना चाहते थे। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार इसी गाने के लिए संदेश भेजा। दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशव खुराना। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से इस गाने को सुनना चाहते थे मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, इसी गाने को पसंद किया।

वड़ा बॉम्बो सुपाई साईगांव से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी और देबेन जी। इसे गाने के लिए संदेश प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह और विकास सिंह। इसे गाने को सुनना चाहते थे आर अश्विन सानू, शोभा नाथ अवस्थी और इनके सभी साथी रंजीत गुप्ता, रत्नेश गुप्ता। आप सभी ने हमें संदेश भेजा चुनार मिर्जापुर से। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का संदेश प्राप्त हुआ। कुरासी भैंसा रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू और दीपिका साहू ने हमें संदेश भेजा। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल, भारती बघेल, आप सभी ने संदेश भेजा लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। फजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विष्णु खेड़ा, विशाल खेड़ा, आरबी खेड़ा, तिवांशी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, लाडली खेड़ा, आप सभी ने हमें संदेश भेजा पंजाब से। मुरादाबाद ग्राम दोलापुर उत्तर प्रदेश से इस गाने को सुनना चाहते थे मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से संदेश भेजा रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा ने। इसी गाने के लिए संदेश प्राप्त हुआ सतीश शर्मा का चंडीगढ़ से। गांव व डाकघर निमनाबाद, जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत कौर, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर का संदेश प्राप्त हुआ। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से इस गाने को सुनना चाहते थे ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। किदवई नगर सिद्धापुरा टाउन से इस गाने को पसंद किया जुबैर अली खान, सबीहा जुबैर, अंजुमन खान, आप सभी ने इसी गाने को सुनना चाहते थे। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेहवादा, जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। इसी गाने के लिए संदेश प्राप्त हुआ गांगीवाड़ा जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से रमनदीप परिहार, राजदीप परिहार, अर्पणा परिहार और सुधा परिहार का। हरियाणा से चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा ने इस गाने को पसंद किया। ग्राम पजौनिया जिला जालौन से इस गाने को सुनना चाहते थे सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से इस गाने को पसंद किया जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है आहिस्ता आहिस्ता।

आहिस्ता आहिस्ता इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। आशा भोसले और अनवर की आवाज में निदा फाजली का लिखा यह गीत था, जिसकी तर्ज बनाई थी खयाम ने, और इस गाने को पसंद किया आप सभी श्रोताओं ने। भटिंडा रोड मर्डी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग, शाहकुटी मुगलसराय से सोनू जायसवाल, मंजू जायसवाल, हनुमानपुर मुगलसराय से डब्लू जायसवाल और माया जायसवाल, सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा जायसवाल और पूनम जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से विनोद जायसवाल और पिंकी जायसवाल ने इस गाने को पसंद किया। इसी गाने को सुनना चाहती थी उदिता विश्वकर्मा, सुचिता विश्वकर्मा, आपने हमें संदेश भेजा देवरिया उत्तर प्रदेश से। रोहासी पलारी छत्तीसगढ़ से चेतन साहू, गायत्री साहू, खुशी साहू, रेशमा साहू और वर्षा साहू ने इस गाने को पसंद किया। मंसूरी मुंगीसापुर से इस गाने को सुनना चाहते थे मोहम्मद

जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शाबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। इसी गाने के लिए हमें संदेश भेजा नूर महल महसोल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुरहत जहानाज, साजिया साहिन नाज और नाजिया नूरी नाज। आपने इस गाने को सुनना चाहा। जलालाबाद वेस्ट से इस गाने के लिए संदेश भेजा।

पलक लुबना और यश मंसूरी। इसी गाने के लिए हमें संदेश भेजा नूर महल महसोल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुरहत जहानाज, साजिया साहिन नाज और नाजिया नूरी नाज। आपने इस गाने को सुनना चाहा। जलालाबाद वेस्ट से इस गाने के लिए संदेश भेजा सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा ने। इसी गाने को सुनना चाहते थे राजकोट गुजरात से कौशिक, अस्मिता और इनके मम्मी पापा महेश वडवाड़ा परिवार। इसी गाने के लिए संदेश भेजा किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया, कीर्ति भारती। इसी गाने के लिए संदेश प्राप्त हुआ एकता कॉलोनी रोहतक, सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोत। आप सभी ने संदेश भेजा एकता कॉलोनी रोहतक से। इसी गाने को सुनना चाहते थे लाल माता सुदामार नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। इसी गाने के लिए संदेश प्राप्त हुआ मुंदीचक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी का। पटेल नगर मुगलसराय से इस गाने को पसंद किया सुनील कुमार सिंह ने। इसी गाने को सुनना चाहते थे रईस खान, साविया खान, अनस खान, शकील खान, दानियाल खान। आप सभी ने संदेश भेजा भूले नगर अंबिवली मुंबई महाराष्ट्र से। संबलपुर कांकेर से इस गाने को पसंद किया फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने। सावतपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन और रितेश सेन का संदेश प्राप्त हुआ। रोहासी छत्तीसगढ़ से इस गाने को सुनना चाहते थे मुकेश साहू, नंदनी साहू, मनीष साहू, मयंक साहू और जानकी साहू। आपका संदेश मिला। हनुमान मंदिर चांदनी चौक से इस गाने को पसंद किया त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी, शिवनाथ जायसवाल और इनके परिवार के सभी सदस्य। जिला बक्सर बिहार से इस गाने को सुनना चाहते थे अर्जुन चौधरी। इसी गाने के लिए संदेश भेजा बेवरा संबलपुर से शिव दयाल वर्मा, नरोत्तम वर्मा, तुषार वर्मा और वंशिका वर्मा ने। इसी गाने के लिए संदेश मिला यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खटसे और विनोद खटसे का। कलानौर से इस गाने को पसंद किया नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा ने। इसी गाने को सुनना चाहते थे राम सकल चौधरी चोचकपुर बाजार जिला गाजीपुर से। इसी गाने के लिए संदेश प्राप्त हुआ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि जंघेल, ओशिका जंघेल, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल। आपने हमें संदेश भेजा। कर्मा चौक लोहरी डी से इस गाने को पसंद किया यशवंत साहू, रमेशिया, हर्ष और अंश साहू ने। अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि प्रजापति, आकाश प्रजापति, शिव प्रकाश प्रजापति, मोनी प्रजापति, राहुल प्रजापति। आप सभी ने संदेश भेजा करौता वाराणसी से। इमरती यादव ने हमें संदेश भेजा ग्राम भट्टी पोस्ट सकल डीहा चंदौली से। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है खानदान। आवाज लता मंगेशकर की है। गीत नक्श लियालपुरी का, संगीत खयाम का। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे खानदान फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसे लिखा था नक्शलियालपुरी ने, संगीत से सवारा था खयाम ने, और इस गाने के लिए हमें फरमाइश भेजी आप सभी श्रोताओं ने। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरडी से नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से, हर्षिता लाम से और जय लाम से इसी गाने को सुनना चाहते थे। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और निलोफर फातमा इसी गाने के लिए हमें संदेश भेजा। दिलदार नगर गांव पश्चिम मोहल्ला जिला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह यादव और कयूम शाह ने इसी गाने को सुनना चाहते थे। बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने और वैष्णवी ढोमने, बेड़ी से ही अर्जुन गवनेकर, धीरज सवासरे, चंचल ढोमने आप सभी का संदेश प्राप्त हुआ। इसी गाने के लिए हमें फरमाइश भेजी लोहता वाराणसी से हरीश चंद्र उपाध्याय और विशाखा उपाध्याय ने इसी गाने को सुनना चाहा। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना आप सभी ने हमें संदेश भेजा ग्राम व पोस्ट लदावली जिला मुरादाबाद से इसी गाने को सुनना चाहते।

जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौशर, डॉक्टर इशिता साहनी, झुमरी तिलैया से डॉक्टर सोनम, बरकाकाना से नाजनी तबस्सुम अफजल इब्राहिम, मोहम्मद इफ्तिकार इब्राहिम। इसी गाने के लिए संदेश प्राप्त हुआ। मलियान सरदना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन और आदि जैन, आप सभी का संदेश मिला। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक का संदेश प्राप्त हुआ। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान का संदेश मिला। इसी गाने को सुनना चाहते थे। वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी का। कबीर डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से इस गाने को पसंद किया। देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी पूजा तामोरिया, राधिका और प्रभा देवी तामोरिया और मास्टर अल कबीर ने इसी गाने के लिए संदेश भेजा। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल और बावड़ी से खुदा वृक्ष खलीफा, आपका संदेश हमें मिला। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू ने हमें संदेश भेजा। इसी गाने के लिए संदेश भेजा। गांव फरासे जिला हिसार से राजकुमार डोडी, पुष्पेंद्र कुमार डोडी और प्रमोद कुमार डोडी ने इसी गाने को सुनना चाहते थे। विनय प्रजापति, गोविंद प्रजापति, वंदना प्रजापति, राहुल प्रजापति और विद्या प्रजापति, आप सभी ने संदेश भेजा। जलालीपुरा वाराणसी से इसी गाने को सुनना चाहते थे। रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़, इसी गाने के लिए हमें संदेश भेजा। कुंभार गले कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन और पांडुरंग कुंभार इसी गाने को सुनना चाहते थे। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शायना शर्मा और निवान शर्मा, सुरेश विश्वकर्मा, सुशीला विश्वकर्मा, पीयूष विश्वकर्मा, आयुष विश्वकर्मा, प्रहलाद विश्वकर्मा, आयांश विश्वकर्मा और हमारी प्यारी बिटिया रानी, आप सभी ने संदेश भेजा। सदर बाजार नौगढ़ चंदौली से अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से इस गाने को सुनना चाहते थे। माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है हम दोनों। आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की हैं, गीत साहिर का, संगीत जयदेव का। आइए सुने कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में अभी आप सुन रहे थे हम दोनों फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसे लिखा था साहिर लुधियानवी ने, संगीत तैयार किया था जयदेव ने। और इस गाने के लिए हमें आप सभी श्रोताओं के संदेश प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, राम शरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति और शशिकांता प्रजापति, इसी गाने के लिए हमें संदेश प्राप्त हुआ। खगड़िया बिहार से सिकंदर कुमार तांती, यदुनंदन तांती, पूजा जूही, सुजीत सौरभ, आप सभी का संदेश हमें मिला। इसी गाने को सुनना चाहते थे स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया, इसी गाने के लिए हमें संदेश भेजा जौनपुर से यीशु मौर्या ने। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से इस गाने को सुनना चाहते थे भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष, आप सभी का संदेश प्राप्त हुआ। लाड़गढ़ जटान जिला श्रीगंगानगर से हमें संदेश भेजा श्री रामेश्वर जी निरायनिया, सुमन, दिव्या, नूतन, पंकज, मेहरचंद, हेमू, मनीषा और श्री ब्रिजलाल जी, आप सभी का संदेश हमें प्राप्त हुआ। इसी गाने को सुनना चाहते थे रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, इसी गाने के लिए संदेश प्राप्त हुआ। दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा, आप सभी का संदेश मिला। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से संदेश भेजा बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, राजेंद्र माधव वर्मा और यश प्रयाण वर्मा ने। सहारनपुर से हमें संदेश प्राप्त हुआ आशा नारंग सोनाली और सुरेश नारंग का। पिहरा बाजार झुमरी तलैया से हमें संदेश भेजा अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमार कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, रिया जिया तूसी, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, मुन्नी देवी शाह, जयप्रकाश साव, वसंत लाल साव, हीरा मोती पन्ना लाल साव, आप सभी का संदेश मिला। इसी गाने को सुनना चाहते थे गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा। मरहरा दरवाजा एटा से इस गाने को पसंद किया नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी और रसीद वारसी, आप सभी का संदेश प्राप्त हुआ। इसी गाने को सुनना चाहते थे लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, आप सभी का संदेश प्राप्त हुआ। इसी गाने को सुनना चाहते थे गांव कलमणी खुर्द जिला झालावाड़।

राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पवार, भानु प्रताप सिंह पवार और समस्त राजपूताना परिवार, आप सभी ने इस गाने को पसंद किया। इसी गाने के लिए संदेश भेजा लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी और उज्जवल दास ने। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर का संदेश प्राप्त हुआ। गुजरात से संदेश भेजा धीरज वी रबारी ने, इसी गाने को सुनना चाहते थे। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का, आप सभी ने हमें संदेश भेजा। इसी गाने के लिए संदेश प्राप्त हुआ। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, सायक गायकवाड़, इसी गाने के लिए संदेश भेजा। मदरसा गेट भावपुर मड़िया हूँ जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नावेद इरशाद, अजरा तबस्सुम, रायपुर अनेक जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और आफिया परवीन, इसी गाने के लिए संदेश भेजा। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा ने। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, साथ में गौरव शर्मा, आपका संदेश हमें मिला। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और सौर्य नामदेव ने हमें संदेश भेजा। विशाल मिश्रा बंधवा बाजार माधोपुर इमलिया से। इसके साथ ही दीजिए इजाजत स्वस्थ श्रीवास्तव को कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस समाप्त करने की। अगले कार्यक्रम में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं।

0: यहाँ घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवाकोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया।

0: प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
1: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: स्टीफन, हैप्पी बर्थडे टू यू।
3: हैप्पी बर्थडे टू यू स्टीफन।
4: हाउ आर यू? हैप्पी बर्थडे स्टीफन।
5: थैंक यू।
4: कांग्रेचुलेशंस।
5: थैंक यू जॉन। थैंक यू सो वेरी मच। हाय मार्टिन, हाउ आर यू?
2: ओह फाइन।
5: थैंक्स फॉर कमिंग इन। प्लीज कम इन।
3: यस यस। व्हाई नॉट?
2: कम। जॉन, प्लीज कम हियर।
3: ओह श्योर।
5: जॉइन अस फॉर अ ड्रिंक।
0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह,

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे

0: az szal harcsiunk.
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
2: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुई।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर।

0: ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
1: जी।
0: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
1: तो लीजिए सुनिए।
2: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
3: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
4: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
3: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
4: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
3: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमरीका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
4: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
5: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
3: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
6: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
4: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
7: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग ना होने दें।
3: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
4: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने

0: ने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
3: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली।
4: हाँ।
3: गुड़िया गौरव सब तैयार?
5: हाँ जी बाजी, हम तैयार
3: हैं। वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
6: आग का गोला?
3: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
4: सूरज।
3: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो,
7: बहुत आसान पूछते हो।
3: ओफो क्या करूं, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
7: अगली बार में बहुत मुश्किल।
3: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
4: हाँ।
3: मैं कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
7: मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
3: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
8: वो तारा होता है।
3: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
9: वो रात और दिन भी बनाता है।
3: एकदम सही एकदम सही।
10: वो हमें धूप भी देता है।
3: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
7: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
3: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
7: विटामिन डी।
3: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत अच्छे।
10: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
3: हाँ हाँ बिल्कुल,
7: पेड़ों को खाना भी देता है।
3: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
7: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
3: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
7: हाँ।
9: जब तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
3: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे हैं, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
7: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
3: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
7: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
10: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
3: ना।
10: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
3: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
7: मौसी वो बहुत बड़ा भी होता है।
3: बहुत बड़ा होता है
10: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
3: हम क्योंकि कहीं
7: दूर होता है इसलिए
3: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
7: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
3: हाँ
10: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
3: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
4: सर्दी।
3: ओह ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी?

0: पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
1: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती है। सूरज आग का गोला लेकिन,
2: सूरज आग का गोला लेकिन
1: फिर भी जीवन दाता है,
2: फिर भी जीवन दाता है।
1: धरती काटे चक्कर इसके,
2: धरती काटे चक्कर इसके
1: लगे ये चलता जाता है,
2: लगे ये चलता जाता है।
1: सर्दी गर्मी बनते इससे,
2: सर्दी गर्मी बनते इससे
1: ये दिन रात बनाता है,
2: ये दिन रात बनाता है।
1: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
2: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक
1: सूरज ये
2: कहलाता है।
1: शाबाश सूरज ये कहलाता है, सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
0: मौसी कर पहेली आज ही बता दो।
1: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है
3: जल्दी आना मौसी।
1: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
0: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
1: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं कल आऊँ की नहीं आऊँ?
0: वो भी दस पूछेंगे।
1: दस दस पहेलियाँ? अच्छा चलो मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना। डर जाती
0: है। और आपके कुल मिला के 70 हो जाएंगे।
1: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
3: नहीं, 80 हो जाएंगे।
1: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला। और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
7: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
8: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
7: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
8: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
7: डायल कीजिए
9: 0542227658।
8: नंबर एक बार फिर नोट करें
10: 0542227658।
11: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
12: याद रखिए, शौक सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
11: पार्टियों में नशा नहीं खुशियां बांटिए।
12: नशा नहीं जिंदगी अपनाइए।
11: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
12: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हमारी कलाकार हैं डॉक्टर संगीता पंडित। आइए सुने इनके गाए हुए गीत।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार हैं डॉक्टर संगीता पंडित। आइए सुने इनका गाया अगला गीत।

डॉक्टर संगीता पंडित के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर वी बालाजी का वायलिन वादन। राग है शुद्ध सारंग। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं चंदन विश्वकर्मा।

0: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर वी बालाजी का वायलिन पर बजाया राग शुद्ध सारंग। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे चंदन विश्वकर्मा। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने वाला है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृह मंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा।
2: ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण, एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकसित विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है।

भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं, उसके बाद हम आपको बताएंगे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। लीजिए पहले सुन लीजिए खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं। थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार गजराज सोनकर, जिनके पिता का नाम है स्वर्गीय हजारी सोनकर, ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। इनकी आयु है 56 वर्ष, लंबाई 4 फीट 9 इंच, रंग सांवला और घटना के समय इन्होंने नीले रंग की चेक शर्ट और काला लोअर पहना हुआ है। इनके विषय में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी, मोबाइल नंबर 9026361781 और 7839853223। इन नंबरों पर आप सूचित कर सकते हैं। थाना लंका जनपद कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार मुस्कान, जिनकी माता का नाम सीमा देवी और पिता का नाम परवीन है, पता है नरिया लंका वाराणसी, ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। इनकी आयु है 19 वर्ष, लंबाई 5 फीट 3 इंच, रंग सांवला है। इनके विषय में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। थाना लंका जनपद कमिश्नरेट वाराणसी, मोबाइल नंबर है 9628283166 और 9628652960। इन नंबरों पे आप सूचित कर सकते हैं। इसके साथ ही खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर आप सुनेंगे विदुषी डॉक्टर श्रावणी विश्वास का सितार वादन। रात 10 बजे सुनिएगा साहित्यिक पत्रिका का कार्यक्रम मंजूषा, इसमें आप सुनेंगे अबू शहमा का काव्य पाठ और डॉक्टर सुशील कुमार सिंह की वार्ता, जिसका विषय होगा हिंदी भाषा का वैश्वीकरण और चुनौतियां। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आपके लिए लेकर आएंगे रात 9:30 से। रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की गायी गजलें। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर संतोष कुमार गिरी से सतीश कुमार यादव की बातचीत, विषय होगा पशुपालन हेतु सरकारी सुविधाएं। साथ ही किसान भाई आनंद उठा सकेंगे महुआ बनर्जी के गाय लोकगीत का। इन्हीं के गाय लोकगीत आप दिन में 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में भी सुन सकेंगे। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवा साथी गीत संगीत के साथ ही सुनेंगे आज की बात, सिने दर्पण, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। एक ही कलाकार कार्यक्रम होगा दिन में 2:30 से। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर बहने चर्चा, गृहलक्ष्मी टिप्स, जायका और गीत संगीत के साथ ही सुनेंगी कहानी रिश्ता, कहानीकार होंगी गुंजन शाह। श्रोता फिल्म संगीत का

नंद उठा सकेंगे शाम 5 बजे, शाम 6:10 पर, शाम 7 बजे से शाम 7:31 पर रसरंग कार्यक्रम में, और रात 8:15 पर रसमाधुरी कार्यक्रम में। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से।

0: عہدیداروں کا تقرر کیا ہے۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے تمام نو تعینات عہدیداروں کو مبارکباد دی۔ آج 10 محرم الحرام ہے، اس دن کو عاشورہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کو اپنے ساتھیوں سمیت میدان کربلا میں شہید کیا گیا تھا۔ آج ریاست بھر میں لوگ مختلف کربلا میں تعزیے لے کر ان کی تدفین کر رہے ہیں۔ لکھنؤ میں مسلم کمیونٹی کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی تعزیہ داری کرتے ہیں۔ تعزیوں کو آج لکھنؤ کے مختلف کربلا میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ لکھنؤ ٹریفک پولیس کی جانب سے تالکٹورا کربلا، مہانگر کربلا، ایش باغ، تیلی باغ اور عالم باغ کے مختلف راستوں پر ٹریفک کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ ٹریفک کی یہ پابندی تعزیے کے جلوس کے اختتام تک نافذ رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ہم آکاشوانی کے وارانسی کیندر سے بول رہے ہیں۔ دن کے 1:15 ہوئے ہیں۔ پرستوت ہے بہنوں کے لیے کارکرم گرہ لکشمی۔
2: سکھیوں کے ساتھ،
3: سکھیوں کے بعد،
2: سکھیوں کے جذبات،
3: گرہ لکشمی۔
4: कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को सिम्मी का नमस्कार और सोनी आपको भी मेरा नमस्कार।
5: गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता सखियों को सोनी का प्यार भरा नमस्कार और सिम्मी आपको भी नमस्कार।
4: सोनी कैसी हैं आप?
5: भाई ठीक तो हूँ, लेकिन गर्मी और धूप से बहुत परेशान हूँ।
4: भाई गर्मी तो खूब पड़ रही है, पर कोई बात नहीं, गर्मी तो हमेशा ही पड़ती है और जब बारिश का मौसम आएगा तो बारिश होगी भी, क्योंकि गर्मी और सर्दी ना अपने समय से मौसम के अनुसार ही आएंगे और जाएंगे भी, इसलिए परेशान क्या होना। पर देखो ना, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके, दूसरों को कष्ट देकर, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करके, उनके अधिकारों का हनन करके, अपने से कमजोर लोगों को सताकर उन्हें अपमानित करना गलत ही नहीं है बल्कि दंडनीय अपराध भी है।
5: बिल्कुल सिम्मी, किसी को भी कभी जो कमजोर है या दुर्बल है, हमसे अपने आप में लगाना और किसी को भी परेशान करना, मतलब बिना वजह या कोई कारण भी है, तो आप उसके लिए उसको किसी भी तरह प्रताड़ित नहीं कर सकते, यातना नहीं दे सकते। तो सखियों, आज हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है और इसकी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और सिमी, यातना चाहे कैसी भी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरह की हो, तो ये एक अक्षम्य है, अक्षम्य है, इसे माफ नहीं किया जाता और एक तरह का अपराध भी है। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से अगर हम शारीरिक मानसिक प्रताड़ना देते हैं तो ये यातना है। और इसके लिए मतलब इस अपराध के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं और जो लोग यातना के शिकार हुए हैं उन्हें न्याय दिलाना, उनके पुनर्वास में मदद करना, उनके अधिकारों को दिलाना, उनके समर्थन में बात करना, उनके साथ खड़े होना, ये इस दिवस मनाने का उद्देश्य है।
4: इसीलिए ना सोनी, दुनिया भर में यातना पीड़ितों और उनसे बचे हुए लोगों के साहस का सम्मान करने और उनका समर्थन करने और मानवता के खिलाफ इन जघन्य अपराध के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ही हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा आज के दिन यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है
5: जी।
4: और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य या कहें कि लोगों को ये समझाना भी है कि यातना न केवल अमानवीय है बल्कि एक गंभीर अपराध भी है जो हमारे मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है। इसलिए तो दुनिया भर की सरकारों से, समाज से और नागरिकों से ये दिन अपील करता है कि एक ऐसी दुनिया का निर्माण करे जो मानवीय गरिमा और अधिकारों का सम्मान होता है और जहाँ सभी लोग प्रेम से और शांति से रहते हैं।
5: और सभी के साथ प्रेम हो, सम्मान हो, सभी का किसी का मत, किसी को शोषण न किया जाए, सभी को समान समझा जाए।
4: हाँ, तो सभी आराम से रहें, शांति से रहें तो अच्छा है ना, सभी लोगों को विकास भी होगा और मिलजुल कर रहने में जो खुशी है वो कहीं नहीं है।
5: बिल्कुल। और सिमी, आज अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य सेवन एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस भी है। सखियों, मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे की लत से बचाना, अवैध मादक पदार्थों के व्यापार को रोकना और एक नशा मुक्त समाज बनाना है। और ये दिवस दुनिया भर के नशीली दवाओं की समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है और संयुक्त राष्ट्र महासभा

0: ने इसकी शुरुआत की थी और ये प्रस्ताव पारित करके हर साल 26 जून को इसे मनाने का निर्णय लिया था।
1: बिल्कुल सोनी, देखो ना, क्योंकि जो नशा होता है वो किसी भी रूप में अच्छा नहीं होता है ना।
0: जी
1: लोग अक्सर चिंता में, तनाव में, डिप्रेशन में या फिर फैशन के कारण भी कई बार कि दोस्तों को देखा देखी भी
0: हाँ
1: होता है ना कि नशे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। और फिर क्या होता है कि एक बार तो शुरू होता है जो
0: वो
1: वो
0: लत पड़
1: धीरे धीरे
0: जाती
1: एक
0: है
1: लत
0: धीरे
1: बन
0: धीरे,
1: जाती है,
0: और
1: है?
0: खासकर आजकल युवाओं में ये चीजें ज्यादा
1: ज्यादा
0: चल
1: चल रही है ना।
0: रही हैं। जी
1: और पर इसके पता है बहुत ही ज्यादा नुकसान है इसकी
0: जी
1: वजह से। परिवार में तनाव तो होता ही है, साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से भी अनेक परेशानियां होने लगती हैं। कई बार लीवर खराब होना या और भी परेशानियां होने लगती हैं, जिससे हमें शारीरिक रूप से तो नुकसान होता है और भी हमारे कैरियर या अन्य भी चीजों में भी
0: इन सभी
1: परेशानी
0: चीजों
1: होती
0: पर
1: है।
0: प्रभाव पड़ता है ना भाई,
1: हाँ,
0: हमारे परिवार प्रभाव पड़ता है, हमारे बच्चों पर प्रभाव पड़ता है।
1: तो
0: तो
1: इसलिए नशीले पदार्थों से दूर रहें हम। बल्कि नशे से किसी भी रूप का अच्छा नहीं होता। हमेशा खुश रहें, तनाव से दूर रहने के लिए योगा कर सकते हैं, अपनी सोच को सकारात्मक कर सकते हैं।
0: बहुत और भी बहुत सारी चीजें हैं जो
1: हाँ
0: हम तनाव से अवसाद से दूर रह सकते हैं, जैसे आपने कहा कि योगा कर सकते हैं, और जैसे कुछ अगर आपका लेखन में रुचि तो लिख कुछ लिख सकते हैं, कुछ
1: भाई,
0: पढ़
1: अपने आप
0: सकते
1: को
0: हैं,
1: बिजी रखे हम बहुत सी चीजें
0: या
1: कर
0: आप
1: सकते हैं ना।
0: प्रकृति से भी जुड़ सक प्रकृति से भी जुड़ सकते हैं कि भाई कहीं घूमने जा सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जिनसे जुड़ के आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं और थोड़ा सा जीवन को खुशमय बना सकते हैं।
1: और सोनी, अब अपनी सखियों के साथ भी हम थोड़ा सा अपने मूड को अच्छा करते हुए, सखियों को भी तनाव से दूर करते हुए, उन्हें एक प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं। तो आइए अपनी सखियों के साथ सुनते हैं ये गीत।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
4: 0542227658।
5: 0542227658।
2: लो अभी फोन लगाता हूँ।
5: 0542227658।
6: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
7: सखियो, आज मुहर्रम भी है। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत की याद के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व बुराई और अत्याचार के खिलाफ उनकी कुर्बानी का प्रतीक है।
8: करबला की जंग में इमाम हुसैन और उनके साथी शहीद हुए थे, उनकी शहादत के रूप में मुहर्रम मनाया जाता है। और मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन काले कपड़े पहनकर शोक मनाते हैं और जैसे कि अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं और ताजी और जुलूस वगैरह भी निकालते हैं।
7: सखियो, ये मुहर्रम का जो पर्व है सत्य न्याय और धर्म के लिए दी गई कुर्बानी के रूप में मनाया जाता है। और सखियो, इसी के साथ जो हमारे आपसी संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, वो हमें खुशियाँ तो देते ही हैं, साथ ही हमारी परेशानियों में हमारा साथ भी निभाते हैं, हमें भावनात्मक रूप से हिम्मत भी देते हैं और हमारी हिम्मत बढ़ाते भी हैं। पर और जरूरी नहीं है कि ये रिश्ते सिर्फ खून से जुड़े हुए ही हों, यानी कि हमारे भाई बहन या कोई और हो, बल्कि इसके अलावा ऐसे बहुत से रिश्ते होते हैं जिनमें प्रेम भी होता है और हमारी दोस्ती के भी ऐसे बहुत से रिश्ते होते हैं जो हर परिस्थिति में हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ निभाते हैं और हमारा साथ देते हैं।
8: बिल्कुल जिम्मी, बहुत सही है। और कई सारे ऐसे रिश्ते हम बना लेते हैं अपने आसपास जो होते हैं, जो हमारे एक, जैसे अगर हम कभी मुसीबत पे हैं तो हमारे एक इशारे पर खड़े हो जाते हैं, हमारा साथ निभाते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और कुछ यही बात कह रही है हमारी आज की ये कहानी, और इस कहानी का शीर्षक है रिश्ता और कहानीकार है।

0: कुंदनशा।
1: आंगन में फैली दोपहर की धूप अपनी रोशनी कम करती हुई धीरे धीरे खिड़की के रास्ते सांझ की गोद में समा रही थी। रात के बादल अभी दूर थे, लेकिन भार्गव जी को अपने बेटे के जीवन में छाने वाला अंधेरा साफ दिखाई दे रहा था। टेबल पर शादी का कार्ड रखा था, ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में पल्लवी प्रणय प्रखर लिखा था। पल्लवी अभी अभी देकर गई थी। राहुल के मम्मी पापा दोनों में से किसी ने भी कार्ड खोल कर नहीं पढ़ा, बस उसे उठाकर टेबल पर रख दिया। जाते समय उसने उन्हें आने के लिए बार बार अनुरोध किया था, उन्होंने भी बस हाँ में सिर हिला दिया था, लेकिन उन्हें पता था उनके परिवार से कोई भी न जाएगा। उसके जाने के बाद कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा, फिर सन्नाटे के बीच राहुल के पापा गोकुल भार्गव जी बोले, कार्ड हटाकर कहीं और रख दो, राहुल देखेगा तो उसे बहुत दुख होगा, वो तो बिल्कुल टूट जाएगा, बिखर जाएगा मेरा बेटा। 5-6 सालों से तो मैं ही देख रहा हूं दोनों को हर दम साथ, जैसे चांद के साथ चांदनी, जैसे सितार के साथ सरगम, अब तो एकदम अकेला हो जाएगा। राहुल को पता होगा ये सब? ऐसे कैसे धोखा दे सकती है ये मेरे बेटे को? मैं तो इसे अपनी बहू ही मान बैठी थी, मिसेस भार्गव बोली। दीपावली पर सारी खरीदी इसके साथ जाके की, एक एक चीज इसकी पसंद से ली। मुझे डार्क शेड के पर्दे पसंद थे, ये बोली, नहीं आंटी, घर की दीवारों के हिसाब से लाइट ब्राउन अच्छा लगेगा, मैंने वही ले लिया। घर में पेंट भी तो इसी से पूछकर करवाया था। मुझे लगता अब इसका भी तो घर है, ये कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तो इसे यहीं रहना है। मुझे क्या पता था ये इतनी दगाबाज निकलेगी। जब हमें इतना बुरा लग रहा है तो राहुल का क्या हाल होगा? मुझे तो उसी की चिंता हो रही है। अब मुझे आज भी याद है जब पहली बार राहुल के साथ वो हमारे घर आई थी, जीन्स टी शर्ट पहने कैसी बच्ची सी लग रही थी, व्यवहार भी वैसा ही बच्चों सा, कोई छल नहीं मन में, झरने से बहते निर्जल जल सी। हम सब नाश्ता कर रहे थे, मैंने कहा तो झट से बैठ गई कुर्सी खींचकर और बिना संकोच के हमारे साथ नाश्ता किया, राहुल से नोट्स लिए और मुझे धन्यवाद देते हुए निकल गई। लगा ही नहीं कि वो पहली बार हमारे घर आई हो। उस दिन के बाद से तो अक्सर उसका हमारे घर आना होता, या यूं कहें कि हर दूसरे तीसरे दिन आ ही जाती। राहुल हमारा इकलौता बेटा है, बेटी की चाह हमेशा से थी, शायद इसीलिए वो मुझे ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। कभी भी किसी भी वक्त आ जाती, जैसे ये उसका अपना ही घर हो। आते ही पहले मुझे पूछती, फिर राहुल को। एक दिन शाम को राहुल के साथ आई तो मैं किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, बस फिर क्या था, पहुंच गई कमरे में और मैं कौन सी साड़ी पहनूं, उसके साथ कौन सी चूड़ी ज्वेलरी, मेरे बाल बनाना, मेकअप करना, सब ऐसे अधिकार से कर रही थी जैसे वो मेरी बेटी हो। उस दिन तो खुद को आईने में देखकर मैं खुद ही शर्मा गई थी। अब तो मुझे लगता मैं कोई भी काम उससे सलाह लिए बिना कर ही नहीं सकती, जबकि मुझे किसी का भी दखल पसंद नहीं था। मुझे कहीं भी जाना होता और राहुल जाने में आनाकानी करता तो मैं झट से कह देती, रहने दे, मैं पल्लवी से कह देती हूं, वो ले जाएगी मुझे अपनी स्कूटी से, और राहुल चिढ़ जाता। अब तो ये रोज का हो गया था, कभी राहुल उसके घर, कभी वो हमारे घर, आधे दिन तो राहुल उसी के घर खाना खाता, जाते वक्त कह जाता, आज आने में देर होगी, खाना वही खा लूंगा पल्लवी के घर, आज कंबाइंड स्टडी करनी है, अंकल से नोट्स भी लेने हैं। पल्लवी के पिता फिजिक्स के प्रोफेसर थे, क्लास में जो पढ़ाते अगर उसमें कुछ समझना होता तो वो दोनों को एक साथ ही घर पर बता देते,

राहुल रोज कुछ नए एक्सपेरिमेंट करता और फिर बैठकर प्रोफेसर साहब से डिस्कस करता। प्रोफेसर साहब को भी बहुत अच्छा लगता, इसीलिए वो अक्सर उसे शाम को बुला लेते और देर रात तक उसे समझाते रहते। खाने की टेबल पर भी दोनों का डिस्कशन चलता ही रहता। प्रोफेसर साहब को भी राहुल पसंद था, तभी तो पल्लवी का देर रात तक राहुल के साथ घूमना, सिनेमा जाना कभी बुरा नहीं लगता उन्हें। रात के 8 बज रहे थे, एक दिन अचानक भार्गव जी के चेस्ट पे दर्द होने लगा। राहुल किसी दोस्त की शादी में शहर के बाहर गया हुआ था। मिसेस भार्गव को घबराहट की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहाँ जाएं, किसको बुलाएं, एम्बुलेंस बुलाएं या टैक्सी से ले जाएं। तभी उन्हें पल्लवी का ख्याल आया, तुरंत फोन लगाकर रोने लगी। बोली, जल्दी आ बेटा, अंकल को अस्पताल ले जाना है। पल्लवी का घर ज्यादा दूर नहीं था। कुछ ही देर में पल्लवी प्रोफेसर साहब के साथ उनके घर में थी। प्रोफेसर साहब और पल्लवी ने उन्हें सहारा देकर कार में बैठाया और हॉस्पिटल पहुंच गए। भार्गव जी को सीधे आईसीयू में ले जाया गया। रिसेप्शन पर प्रोफेसर साहब ने ही सारी फॉर्मेलिटी पूरी की। पल्लवी उन्हें सांत्वना देती रही। सारी टेस्टिंग होते होते रात के 11:30 बज गए। डॉक्टर ने बताया एंजाइना पेन है, सुबह और टेस्टिंग करना होगा, अभी 4-5 दिन तो आईसीयू में ही रखना होगा। रात का सन्नाटा, कॉरिडोर में केवल घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। सारी रात प्रोफेसर साहब और पल्लवी ने वहीं बिताई। राहुल को फोन भी उसी ने किया, उन्हें तो जैसे होश ही नहीं था। दूसरे दिन दोपहर तक राहुल भी आ गया, तब तक प्रोफेसर साहब वहीं रहे। पल्लवी ने कई बार उन्हें घर जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। राहुल को देखते ही वो उससे लिपट कर रोने लगी और बोली, आज प्रोफेसर साहब और पल्लवी ने तेरी कमी पूरी कर दी, ले जा, पहले प्रोफेसर साहब को घर छोड़कर आ, कल रात से यही है। प्रोफेसर साहब ने राहुल से कहा, तुम माँ के पास रुको, मैं पल्लवी को ले जाता हूं, कल से यही है, रात में फिर आ जाएगी, तुम आकर इसे ले जाना, अपनी माँ को रात में घर भेज देना, थोड़ा आराम कर लेंगी, पल्लवी रात में तुम्हारे साथ यहां रुक जाएगी, कहकर वो निकल गए। जब तक भार्गव जी हॉस्पिटल में रहे, पल्लवी ने बेटी की तरह उनकी सेवा की। आज इतना बदल गई, भार्गव जी बोले, इधर एक हफ्ते से आई भी नहीं, हो सकता है दोनों में कोई झगड़ा हुआ हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कहते हुए शादी का कार्ड अभी हाथ में उठाया ही था कि दरवाजा ढकेलते हुए राहुल अंदर आ गया। बोला, दरवाजा कैसे खुला था, मैं अंदर तक आ गया और किसी को पता भी नहीं चला। लाइट के स्विच ऑन करते हुए बोला, और ये इतना अंधेरा करके क्यों बैठे हैं आप लोग, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा। किसी ने कुछ नहीं कहा तो थोड़ा सा शंकित हुए बोला, सब ठीक तो है ना। भार्गव जी बोले, तुम ठीक हो। हाँ, मुझे क्या हुआ है, कहाँ थे अभी तक। पल्लवी के घर, पर हुआ क्या। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों उसका चेहरा आश्चर्य से देख रहे थे। कार्ड उसकी ओर बढ़ाते हुए बोले, पल्लवी आई थी, ये दे गई है। ओ, तो आप लोगों को ये खराब लगा कि प्रोफेसर अंकल नहीं आए। माँ, मैंने ही कहा था कि पल्लवी दे आएगी, आप लोग परेशान मत हो, इतनी जल्दी में सब हुआ, और 7 दिन बाद शादी भी है, मैं भी एक हफ्ते से उसकी मदद करने में ही लगा हूं, कोई बेटा तो है नहीं उनका, और फिर पापा के समय कितनी मदद की थी हमारी उन्होंने, हमारा भी तो फर्ज बनता है, वैसे भी पल्लवी के लिए मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। बीच में ही मिसेस भार्गव बोली, तो तुझे पता था कि पल्लवी की शादी हो रही है और तुझे बुरा नहीं लगा। ओ माँ, मुझे क्यों बुरा लगेगा, आप लोग जैसा समझ रहे हैं
वैसा कुछ नहीं है हमारे भी।

हम दोनों बस एक अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। उसकी शादी के बाद भी और मेरी शादी के बाद भी। उसने तो अपने होने वाले पति को भी बता दिया है। अब तो हम तीन दोस्त हो गए हैं। तो क्या तू उससे स्नेह नहीं करता? तू उससे शादी नहीं करना चाहता? करता हूं माँ, लेकिन वैसा नहीं।

0: लेकिन वैसा नहीं जैसा आप लोग समझ रहे हैं। दोस्ती में स्नेह वो एहसास है जो बारिशों की तरह जाने कितने सुहाने पल साथ लाता है। स्नेह तो एक भाई और बहन में भी होता है, वैसा ही स्नेह तो दोस्तों के बीच भी हो सकता है। बस मैंने उससे राखी नहीं बंधवाई, फ्रेंडशिप बैंड बंधवाया। दोस्ती का रिश्ता हर रिश्ते से ऊपर होता है। पता नहीं, हमारे जमाने में तो एक लड़का और लड़की का रिश्ता मतलब स्नेह और शादी। मैं तो उससे अपनी बहू ही मान बैठी थी। अब तेरे लिए दूसरी लड़की खोजनी होगी जो मेरी बहू बने। पल्लवी को तो अब मैं बेटी की तरह विदा करूंगी। चल गाड़ी निकाल, पल्लवी के घर चलते हैं।
1: अभी सखिया सुन रही थी कहानी रिश्ता। कहाँ निकालती गुंजन सा। सखियो, अक्सर स्टाइल बदलने के लिए, बालों को नया लुक देने के लिए, या फिर बढ़ती उम्र के साथ सफेद होते हुए बालों को छुपाने के लिए हम हेयर कलर का उपयोग करते हैं। हेयर कलर अगर प्राकृतिक है, हर्बल है, तब तो ठीक है, पर केमिकल युक्त कलर का सेवन हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है।
2: सिमी बिल्कुल। और इस केमिकल युक्त डाई कलर से हमारे बाल तो खराब होते ही होते हैं, साथ साथ हमारी सेहत पर भी इसका असर पड़ता है। तो केमिकल डाई का प्रयोग न करके कुछ नेचुरल तरीके से अपने सफेद बालों को कलर कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, और अपने बालों को भी कोई नुकसान नहीं होगा।
1: हाँ, क्योंकि जो केमिकल युक्त जो डाई होती है ना, उसमें अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। ये बालों की प्राकृतिक नमी को छीन कर उसको रूखा सूखा और कमजोर बनाता है, जिससे बाल तेजी से झड़ने लगते हैं। और कई बार क्या होता है कि लंबे समय तक अगर हम केमिकल डाई का उपयोग करते हैं तो इससे गंभीर एलर्जी भी हो सकती है। इसलिए हम
2: तो इससे बचने के लिए सिमी हम जैसे कि कोई हर्बल मेहंदी यूज कर सकते हैं या प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हम केमिकल डाई से हमें बचना चाहिए, है ना?
1: हाँ, आंवला रीठा सिका काई से भी
2: हाँ
1: बालों को पोषण भी मिलता है और रंग भी गहरा होता है। साथ ही कलर करने के बाद अच्छे से अगर मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर का इस्तेमाल करें तब भी बाल ठीक रहते हैं। और बाल हमारे हमेशा सुंदर रहें, अच्छे रहें, तो हमें भी अच्छे लगते हैं, और है
2: बिल्कुल। और
1: ना।
2: सुंदर और लंबे बालों को देखकर हर कोई आपकी तारीफ भी तो करेगा।
1: कुछ इस गीत की तरह।

0: चलते चलते हम अपनी सखियों से यही कहेंगे कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमें दें अनुमति।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: सखियों के साथ,
3: सखियों के बाद,
2: सखियों के जज्बात,
3: गृह लक्ष्मी।
4: अभी बहने सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार हैं महुआ बनर्जी। सबसे पहले इनके स्वर में आइए सुनते हैं ये दात्रा गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं महुआ बनर्जी के गाए लोकगीत। इनके स्वर में अभी आप सुन रहे थे दादरा। अब आइए सुने विदेशिया।

महुआ बनर्जी के गाए इस छप रहिया गीत के साथ ही लोक संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: Australia qualify for knockout stage after goalless draw against Paraguay in Group D clash in FIFA World Cup. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
3: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से

0: संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
3: For our business, FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
3: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की

0: शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काटलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद्र की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के

0: लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार, जो केंद्रित है यश जौहर पर।
2: कलाकार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त शुचि उपाध्याय का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, रुपहले पर्दे के चकाचौंध के पीछे कुछ ऐसे फनकार होते हैं जो खुद को लाइमलाइट से दूर रखते हैं, लेकिन सिनेमा की दुनिया को अपनी सूझबूझ से रोशन कर देते हैं। आज भारतीय सिनेमा के एक ऐसे ही दिग्गज, बेहद शालीन, मिलनसार और धर्मा प्रोडक्शंस के संस्थापक यश जौहर जी की पुण्यतिथि है। एक ऐसा इंसान जिसने फिल्मों में सिर्फ पैसा नहीं लगाया, बल्कि उनमें अपनी आत्मा और पारिवारिक मूल्यों को पिरोया। आज के इस विशेष एक ही कलाकार कार्यक्रम में हम यश जौहर के जीवन के अनछुए पन्नों को पलटेंगे, उनके संघर्ष को जानेंगे और उनकी निर्मित कालजयी फिल्मों के उन गीतों का आनंद लेंगे जो आज भी हमारी यादों का हिस्सा है। तो चलिए करते हैं शुरुआत एक ही कलाकार कार्यक्रम की। श्रोताओं, यश जौहर जी के जीवन का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उनका जन्म 6 सितंबर 1929 को अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ था। उनके पिता की वहां एक जानी मानी मिठाई की दुकान थी। जब देश का विभाजन हुआ तो उनका हंसता खेलता परिवार सब कुछ छोड़कर दिल्ली आ गया। दिल्ली में शुरुआती संघर्ष के बाद यश जी की आंखों में सिनेमा के सपने तैरने लगे और वे अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आ गए। मुंबई में उनकी शुरुआती नौकरी बतौर टाइपिस्ट और प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में हुई। उनकी काबिलियत और सादगी को देखकर महान अभिनेता सुनील दत्त साहब ने उन्हें अपनी कंपनी अजंता आर्ट्स में शामिल कर लिया। वहां यश जी ने मुझे जीने दो और ये रास्ते हैं प्यार के जैसी बेहतरीन फिल्मों का प्रोडक्शन संभाला। इसके बाद वे सदाबहार देवानंद साहब की नवकेतन फिल्म से जुड़े। देव साहब के साथ उन्होंने गाइड, ज्वेल थीफ और हरे रामा हरे कृष्णा जैसी ऐतिहासिक फिल्मों में काम की बारीकियों को सीखा। देव साहब यश जी पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। तभी तो जब यश जी ने अपनी खुद की कंपनी खोलने का फैसला लिया तो सबको यकीन था कि कुछ बड़ा होने वाला है। साल 1976 में उन्होंने धर्मा प्रोडक्शंस की स्थापना की और बतौर निर्माता उनकी पहली ही फिल्म दोस्ताना ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और जीनत अमान की इस फिल्म के गाने आज भी दोस्ती की मिसाल है। आइए सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा ये सदाबहार गीत।

गुमराह और डुप्लीकेट जैसी हिट फिल्म देने के बाद समय का पहिया घुमा और साल 1998 में यश जौहर जी के जीवन में एक नया और सबसे खूबसूरत मोड़ आया। उनके बेटे करण जौहर ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा और फिल्म बनाई कुछ कुछ होता है। यश जी ने अपने बेटे के विजन पर पूरा भरोसा किया। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और इसने धर्मा प्रोडक्शंस को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया।

बेगम। इस फिल्म की टैग लाइन थी इट्स ऑल अबाउट लविंग योर पेरेंट्स, यानी ये सब आपके माता पिता को प्यार करने के बारे में है। असल में ये टैग लाइन खुद यश जौहर जी के जीवन का ही अक्स थी। वे पारिवारिक मूल्यों को सबसे ऊपर रखते थे। इस फिल्म के भव्य सेट्स, उम्दा अभिनय और जतिन ललित के संगीत ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का शीर्षक गीत जो आज भी हर दिल को छू जाता है।

श्रोताओं, लता जी की आवाज में ये गीत आज भी आंखों को नम कर जाता है। यश जौहर ने भारतीय सिनेमा को जो भव्यता और विदेशों में जो पहचान दिलाई उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। साल 2003 में आई फिल्म कल हो ना हो बतौर निर्माता उनके जीवन की आखिरी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान वे काफी बीमार थे, लेकिन सिनेमा के प्रति उनका जज्बा आखिरी सांस तक कम नहीं हुआ। 26 जून यानी आज ही के दिन सन 2000 को यश जौहर जी इस नश्वर संसार को छोड़कर हमेशा के लिए विदा हो गए, लेकिन वे पीछे छोड़ गए फिल्मों का एक ऐसा खजाना और एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो आज भी भारतीय सिनेमा का नेतृत्व कर रहा है। यश जी आज भले ही हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन अपनी फिल्मों, अपनी सादगी, अपने गीतों के जरिए वे हमेशा सिनेमा प्रेमियों के दिलों में यशस्वी रहेंगे। आइए आज के इस एक ही कलाकार कार्यक्रम

कार्यक्रम की समापन की ओर बढ़ते हुए सुनते हैं उनकी आखिरी फिल्म का ये कालजयी शीर्षक गीत, जो जीवन के हर पल को जीने की सीख देता है, और यश जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी।

इसी गीत के साथ आज का ये एक ही कलाकार कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे किसी और कलाकार के जीवन के साथ जुड़ी कहानियों और उनके उनके गीतों के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त शुचि उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, जो केंद्रित था यश जौहर पर। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, डीटीएच, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। सायंकालीन सभा के साथ शाम 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.5 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स और न्यूज ऑन एआई ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। आरंभ में आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना फिल्म राजा जानी का गीत। आवाज़ लता मंगेशकर की, शब्द रचना आनंद बख्शी के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आपने सुना फिल्म पड़ोसन का गीत, आवाज़ थी लता मंगेशकर की, बोल थे राजेंद्र के और धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने।

लता मंगेशकर गाए फिल्म पेंटर बाबू के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों कार्यक्रम युवाणी।

0: सपनों को सच करने की ठान लो, मुश्किलों से लड़ने की पहचान लो।
1: आज की मेहनत कल रंग लाएगी, खुद पर भरोसा रखो और उड़ान लो। इन्हीं मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में।
0: नमस्कार, मैं हूँ आपके रेडियो साथी मोनी।
1: और मैं हूँ भानु।
0: हर रोज की तरह आज भी होगा बहुत कुछ खास। साथ ही साथ आपको रूबरू कराएंगे हमारे सीने दर्पण में एक ऐसे कलाकार से जिनके बारे में जानकर आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: दोस्तों, प्रतिवर्ष 26 जून को अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य उन लोगों के प्रति एकजुटता और संवेदना व्यक्त करना है जिन्होंने किसी भी प्रकार के अत्याचार, उत्पीड़न या अमानवीय व्यवहार का सामना किया हो।
1: अत्याचार केवल शारीरिक पीड़ा तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालता है। ऐसे पीड़ितों को न्याय, सम्मान और पुनर्वास प्रदान करना समाज की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ये दिवस हमें मानव अधिकारों की रक्षा और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने का संदेश देता है।
0: बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित यह अवसर हमें याद दिलाता है कि किसी भी सभ्य समाज में हिंसा, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पीड़ितों को सहायता, कानूनी संरक्षण और मानसिक संबल प्रदान करना ही आवश्यक है ताकि वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन पुनः शुरू कर सकें।
1: आइए इस अवसर पर हम सभी मानवता, करुणा और न्याय के मूल्य को अपनाने का संकल्प लें तथा ऐसे समाज के निर्माण में योगदान दें जहां हर व्यक्ति सुरक्षित, सम्मानित और स्वतंत्र महसूस कर सके।
0: बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ श्रोताओं, अब रुक करते हैं एक ऐसे पावन अवसर की ओर जो त्याग, बलिदान, सत्य और न्याय के अमर संदेश को जन जन तक पहुंचाता है। हम बात कर रहे हैं मुहर्रम की, जो इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना और मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व रखता है।
1: मुहर्रम का विशेष महत्व कर्बला की ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है। ये हमें इमाम हुसैन और उनके साथियों के अद्वितीय बलिदान की याद दिलाता है। इमाम हुसैन ने सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन अन्याय और अत्याचार के सामने कभी समझौता नहीं किया।
0: बिल्कुल, मुहर्रम हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, सत्य, नैतिकता और मानवता के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। कर्बला की घटना केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि साहस, धैर्य और मानवीय मूल्यों का जीवंत संदेश भी है।
1: आज के समय में मुहर्रम का संदेश हमें आपसी भाईचारे, शांति, सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। ये अवसर आत्मचिंतन का भी है, जब हम अपने जीवन में सत्य, करुणा और न्याय के मूल्यों को और अधिक सुदृढ़ करके संकल्प लेते हैं।
0: आइए, मुहर्रम के इस पावन अवसर पर हम मानवता, प्रेम और न्याय के आदर्शों को अपनाते हुए एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। साथ ही साथ दोस्तों, आज नशा मुक्ति दिवस भी है, जिसके अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं खास प्रोग्राम जिसका विषय है नशा मुक्त युवा सशक्त भारत। सुमित सुमित अंकुर सिंह से आकांक्षा सिंह की ये बातचीत। आइए।

0: ये सुनते हैं।
1: सभी को आकांक्षा सिंह का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ हैं, बेहद गंभीर विषय है। नशे की लत एक ऐसी लत है जिसका प्रभाव न सिर्फ उस व्यक्ति पर पड़ता है, बल्कि परिवार और समाज की जड़ें खोखली करने में नशा अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। किस तरह इस लत को युवाओं से और उस व्यक्ति से दूर किया जा सकता है, क्या ऐसा करना संभव है? इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ हैं सुमित अंकुर सिंह, जो स्वयं राष्ट्रीय नशा मुक्ति व पुनर्वास समिति भारत सरकार के सदस्य हैं, साथ ही साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के नामित सदस्य भी हैं और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से समाज सेवा से भी जुड़े हैं। सुमित जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्कार
1: सुमित जी। जैसा कि आज जो हमारा विषय है बेहद गंभीर है, और खासकर अगर युवाओं के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो आगे बढ़े, उससे सबसे पहला जो प्रश्न है वो तो ये है कि ये जो नशा मुक्ति अभियान है जिससे आप जुड़े हैं, किस तरह आपको प्रेरणा मिली इस अभियान से जुड़ने के लिए?
2: सबसे पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ आपके इस कार्यक्रम को लेकर। जब मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में था, तब घाटों पे मैं ऐसे ही घूमने जाता था बनारस के, क्योंकि मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से ही पढ़ा हुआ छात्र हूँ। उस दौरान क्या हुआ कि घाटों पे आप देखते होंगे कि लोग सिगरेट पी रहे थे, गांजा पी रहे थे, तो वो हमेशा हमारे उस मानचित्र पे वो हमेशा बना रहता था। तो मैं 2014 में इंटर्न करने के लिए मैं एक दिल्ली के संस्थान में गया, और वहां पे लोगों ने जब प्रधानमंत्री, चूंकि सांसद नरेंद्र मोदी जी बन चुके थे, और होता है कि जब हम अपने शहरों की तारीफ करते हैं तो लोग से बता के बात करते हैं
1: जी।
2: तो एक मेरे सीनियर थे, उन्होंने कहा कि चलो मुझे पता है बनारस के घाटों पे क्या होता है, आप ये मत सोचना कि वहां के जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो आपके बनारस के घाट को और माँ गंगा को देखने। मन में प्रश्न आया कि ऐसा आप क्यों कह रहे, बनारस तो सच में आध्यात्मिक शहर है, बाबा शिव की नगरी है, जहां पे हम एक एक अध्यात्म की जड़ों को समझने के लिए दुनिया के लोग आते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है, वहां पे लोग नशे के लिए विदेशी पर्यटक आते हैं। और उसके बाद से मैं जब बनारस आया और सच में जब घाटों को मैंने देखा तो मुझे वो नशा वहां पे दिखा। तो वो जो मेरे माइंड में क्लिक किया कि भारत के काशी जो विश्व पुरातन शहर है, उसके घाटों को हम ऐतिहासिक पौराणिक की वजह से नहीं, वहां पे नशे के लिए लोग आ रहे हैं, विदेशी पर्यटक इसलिए जानते हैं,
1: पूरा नजरिया ही बदल दिया।
2: तो वो कॉन्सेप्ट आया, और चूंकि महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत थे उसमें आखिरी सिद्धांत रहा नशा मुक्ति। और अगर हम बात करें कृष्ण वैदिक काल की, जिसमें से कृष्ण, तो आपको याद होगा जब माता गंधारी ने श्राप दिया, जब उनके 99 जितने बच्चे थे और दुर्योधन सहित 100 बच्चों का जब वध होता है, तो श्री कृष्ण जब माँ गंधारी का आशीर्वाद लेने जाते हैं, तब माँ गंधारी ने उनको श्राप दिया था कि तुम्हारा भी जिस प्रकार से मेरा कुल नष्ट हुआ, उसी प्रकार से यदवंश कुल का नाश होगा। तो आप जब मूल रचना में जाएंगी तो एक प्रसंग आता है और वो संदर्भ आता है कि कृष्ण का जो यदवंश कुल का नाश हुआ वो मदिरा की वजह से हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जो अपौराणिक कथाएं रही वो जीवन में कुदेरती रही। और चूंकि मैं नशा नहीं करता था, तो बुद्ध की वो जो पंक्ति अपदीपो भव, तो वो भाव हम लोग के जीवन में कॉन्टिन्यूसली बना रहा और इस अभियान को हम लोग आगे ले गए
1: जी। तो जब आप इस अभियान से जुड़े, जब आपने नशा मुक्ति के लिए काम करना शुरू किया, तो थोड़ा हमें ये भी बताइए कि खासकर युवाओं को इस नशे की लत से दूर रखने के लिए हमारी जो सरकार है उसके क्या प्रयत्न हैं?
2: सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, चूंकि मैं भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में सदस्य हूं पिछले 5 वर्षों से
1: जी।
2: और सबसे यंगर मैं सदस्य रहा, और दोबारा 3 साल का कार्यकाल था, रिपीट भी मुझे मिला, ये मेरा 5वां वर्ष है
1: जी।
2: तो भारत सरकार, आपने देखा होगा कि दुनिया भर तमाम अभियाने चला रही थी, पर 2020-15 अगस्त से नशा मुक्त भारत अभियान के नाम से प्रधानमंत्री जी का ये एक वैचारिक और एक उनका एक संकल्पित प्रोग्राम बना, जिसको लाल किला के प्राचीर से उन्होंने कहा था कि भारत को अब नशा मुक्त होना होगा, भारत के युवाओं को अब नशा मुक्त होना होगा। तो उस दौरान क्या किया कि मिनिस्ट्री ने पूरे देश में, आपने देखा होगा कि एजुकेशन जितने कॉलेज चल रहे हैं, इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, वहां पे इस अभियान को बच्चों के बीच, छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में, जन जन तक ले जाना जागरूकता के माध्यम से किया गया। दूसरा सबसे जो इम्प्लीमेंटेशन वर्क है भारत सरकार की, पूरे देश में 570 हमारे नशा मुक्ति सेंटर चलते हैं, जो कि एक बड़े अमाउंट

0: में हमारी सरकार फंड्स उन्हें प्रोवाइड करती हैं। 15 वेडेड सेंटर होती हैं जिसमें एक बार में 15 लोग जाके इलाज करा सकते हैं, और 35 डेज का ये पूरा ड्यूरेशन होता है, जिसमें मान के चलिए कि कोई अगर युवा या कोई भी व्यक्ति किसी भी एज का, 18 साल के बाद का अगर एज का व्यक्ति है और वो नशे में संलिप्त है, अगर उसका परिवार और उसके स्वयं कंसर्न के साथ वो जा सकता है। बनारस में कई दो सेंटर्स हैं, मैं उसके भी आगे चल के नाम आपको बताऊंगा,
1: जी
0: तो उस सेंटर में वो जाए, अपना एडमिशन कराएं और 35 डेज तक उनके रहने खाने की व्यवस्था और एमबीबीएस डॉक्टर के अंतर्गत योगा टीचर्स के साथ, मेडिटेशन के साथ उनकी सारी व्यवस्थाएं सब कुछ निःशुल्क भारत सरकार देती है।
1: जी
0: तो ऐसे तमाम कई सारे कार्यक्रम भारत सरकार चला रही है, और एक टोल फ्री नंबर ने भी जारी किया है सरकार ने, जो नंबर है 1-44-16। आप इस पे कॉल कर सकते हैं और नशा मुक्ति से रिलेटेड आपके इर्द गिर्द आसपास कोई भी अगर संलिप्त है तो इसकी जानकारी आपको पूरी मुहैया की जाएगी। साथ ही साथ 2020 के बाद क्या किया गया कि जितने सीएमओ हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर,
1: जी
0: उनको भी ये निर्देश दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की ओर से कि अगर कोई व्यक्ति नशे में संलिप्त है, वो आपके पास आता है, तो नारकोटिक्स की पूरी एक टीम बनाई गई है जो कि सीएमओ के अंतर्गत वो नशा छुड़ाने की पूरी जानकारी, और अगर सिर्फ एक दिन दो दिन दवा देने से काम चल सकता है तो वो भी व्यवस्थाएं कराई गई भारत सरकार की ओर से। जी
1: अभी आपने जिक्र किया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का अगर कोई व्यक्ति आता है ऐसे सेंटरों पे तो उसका इलाज किया जाता है। तो क्या 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति है जिन्हें हम जुवेनाइल कह सकते हैं या जो किशोर जो उम्र के बच्चे हैं, क्या वो भी ऐसे सेंटर्स में आते हैं?
0: देखिए, इस बार जो बैठक हुई थी अभी पिछले महीने, मैं उस बैठक में था माननीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में, और देश भर से आए हुए चीफ सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अलग अलग एनजीओ के लोग थे। तो चूंकि अभी तक जुवेनाइल को नशा देना ही अपराध है, सबसे पहले आप देखेंगे कि 18 वर्ष के नीचे बच्चों को फिलहाल 16 वर्ष कर दिया गया है, तो जब वो कानून ही नहीं है उनको देने का, लेकिन जैसे कहीं से बच्चे पा जा रहे हैं और वो नशा करने लग रहे हैं, उससे संलिप्त है, उसके लिए सरकार आने वाले समय पे जुवेनाइल की व्यवस्था बनाएगी। लेकिन हाँ, महिलाओं के लिए भारत सरकार ने अलग अलग पिंक सेंटर बना रखे हैं, पर जुवेनाइल का ऐसा अभी तक तो नहीं, लेकिन इस बैठक के बाद है, उम्मीद है कि हम जुवेनाइल सेंटर भी ओपन करेंगे। चूंकि ये अपराध है बच्चों को 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को देने का अनुमति है, 21 वर्ष के नीचे के लोगों को देना अपराध है, इसलिए अभी तक इसकी ऐसी कोई व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा नहीं की गई है।
1: लेकिन निकट भविष्य में उम्मीद
0: हाँ,
1: है।
0: इसकी उम्मीद है और जल्द से जल्द ये बनेंगे जुवेनाइल को लेकर।
1: बिल्कुल सुमित जी, विद्यालय और महाविद्यालय जो हैं हमारे, वो किस तरह नशा मुक्ति अभियान में अपना योगदान दे सकते हैं?
0: देखिए, देश में 3 डेट बहुत प्रमुख होते हैं इस अभियान को लेकर। पहला 31 मई आता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस।
1: जी
0: 26 जून विश्व नशा मुक्ति निषेध दिवस है।
1: जी
0: साथ ही साथ 1-2 अक्टूबर को हम लोग नशा मुक्ति दिवस भारत के लिए मनाते हैं।
1: जी
0: तो ये 3 दिवस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 26 जून को हम नशा निषेध दिवस के जानते हैं, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के जानते हैं, 2 अक्टूबर को नशा मुक्ति दिवस के नाम से जानते हैं। तो इन दौरान पे विश्वविद्यालयों में जन जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। साथ ही साथ हमने इस बार अपील किया है यूजीसी से इस बैठक में कि एक हम श्वेत पत्र जारी करें। मैडम,
1: जी
0: जैसे कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपने देखा सफाई मित्र बने,
1: बिल्कुल
0: उसी प्रकार से हम नशा मुक्ति मित्र बनाने की बात कर रहे हैं कि कॉलेज कैंपस में जो हमारे स्टूडेंट है, जो जैनजीज हैं खास तौर
1: जी
0: पे, अगर हम उनके साथ मिलके उनसे एक संकल्प पत्र भरवाएं। जब तमाम प्रकार की, आप देखिए कि जब आप जाति प्रमाण पत्र देते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप जारी करते हैं, तो नशा मुक्ति एक सर्टिफिकेट जारी कराने की बात चल रही है कि कॉलेज में जब बच्चा एडमिशन ले, एट द टाइम ऑफ एजुकेशन, आप जब एडमिशन लेता है तभी उससे हम एक हस्ताक्षर करा लें कि अगर वो कैंपस में नशा करते हुए, नशे से रिलेटेड किसी गतिविधि में वो पाया गया, या तो 1 साल की सजा हो उसको, या तो उसकी डिग्री रोक दी जाए। मैम, एक पंक्ति है, भयविन होए न प्रीत।
1: जी
0: तो जब तक भारत में भय न हो तब तक यहाँ पे कुछ होने
1: काम
0: वाला
1: नहीं
0: नहीं
1: है।
0: है। आपको क्या लगता है, ये हेलमेट लोग अपनी सुरक्षा के लिए लगाते हैं बाइक पर? नहीं, वो लगाते कि रेड लाइट आ गई है, चालान ना आ जाए, और चालान चूंकि 1000 रुपए का

0: होगा, उनकी पॉकेट ढीली हो जाएगी, इसलिए हमारे भारत में लोग हेलमेट लगाते हैं।
1: बिल्कुल
0: किसी पौधे को अंदर अगर वो जड़ें उसकी सूख चुकी, कितना भी खाद पानी हम दे दें, मैं उसके अंदर पत्ते नहीं आने
1: नहीं
0: वाले।
1: आएंगे जी।
0: लेकिन अगर वो पौधा है, उसको सुशोभित है, उसकी पत्ती आ रही है, उसमें हम जल दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, देखिए उसकी शाखाएं हैं वो और बड़ी होती जाएंगी और उसकी ग्रीनरी बढ़ेगी। उसी प्रकार से हम अगर यूथ को तभी रोक लें, खासतौर मैं जेनजी और जेनजी अल्फा की बात कर रहा हूँ,
1: जी
0: आपको मैं एक संदर्भ याद दिलाता हूँ, 1917 में चंपारण में गांधी जी, नील क्रांति की कहानी सबको याद होगी, राजकुमार जी की। गांधी जी क्या करते थे कि सुबह दिन भर वो कहानियां बताते थे कि भारत को आजाद होना है, तुम लोग को एक साथ होना होगा। देखते थे जैसे ही सूर्य अस्त होता था, वो चंपारण के लोग गायब हो जाते थे, तो वो दारू पीना शुरू कर देते थे। तो गांधी जी ने एक दिन देखा, दो दिन देखा, तीसरे दिन उन्होंने कहा ये आजादी तो भूलो, पहले पहले हमें नशे से आजादी पानी होगी। तो आपको याद होगा 1917 में पहली बार गांधी जी ने भारत को अंग्रेजों से आजाद होने के लिए बात नहीं कही, पहले कहा कि भारत पहले नशे से आजाद हो, हम जब नशे से आजाद हो जाएंगे तो हम अंग्रेजों से आजाद हो जाएंगे। फिर आपको याद होगा 2017 जब इसको शताब्दी वर्ष होता है, तो यशस्वी मैं प्राउड फील करता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री तब के नीतीश कुमार जी ने बिहार को नशा मुक्त प्रदेश घोषित किया।
1: जी
0: दुनिया भर के तमाम लोगों ने कहा, भारत के लोगों ने कहा कि इकोनॉमिक्स रुक जाएगी, तमाम रुक जाएगी, बिहार का विकास रुक जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बिहार प्रगतिशील रहा, बिहार की सड़कों ने दिखाया, और नीतीश कुमार के उस नेतृत्व में आज भी बिहार नशा मुक्त है। और गांधी जी ने कहा था, नशा जो है वो स्वयं को सिर्फ दूषित नहीं करता, ये आपके समाज को भी, आपकी संस्कृति को भी, और आपके आर्थिक को तो तोड़ता ही तोड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी
1: सुमित जी, आपने बनारस में नशा मुक्ति केंद्रों का जिक्र किया था, तो बताइए ये बनारस में कहाँ कहाँ स्थित हैं और किस तरह काम कर रहे हैं और क्या सुविधाएं व्यक्ति को मिलती हैं
0: मैम
1: यहाँ
0: देखिए,
1: पे?
0: दो यहाँ पे भारत सरकार के अंडरटेकिंग में एनजीओज हैं, एक तो आपको चौबेपुर में मिल जाएंगे
1: जी
0: आप, दूसरा हमारा सबसे निकट आपके महमूरगंज में बंडुआ डीह बगल में है, वहां पे लक्ष्य फाउंडेशन के नाम से वो कार्यरत है। 15 बेडेड, चूंकि सरकार की जो काम होती है बहुत नियमित होती है मैम,
1: जी
0: संसाधने चूंकि हमारे पास कम होती है, 15 लोग एक साथ वहां पे एडमिट 35 डेज के लिए हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जाएगा अपने कंसर्न से, चूंकि एक कंडीशन है मैम, चूंकि आदमी का अपना एक राइट है कि उसके कंसर्न से बिना उसके सिग्नेचर के उसमें एडमिट नहीं किए जाएंगे, तो वो जाए, वहां पे डॉक्टर एमबीबीएस होंगे, वहां पे उनका इलाज होगा, अगर उनको एडमिट करना हो तो एडमिट करेंगे 35 डेज के लिए, अदरवाइज उनको दवा देकर निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं मैम,
1: अच्छा
0: दो टाइम का भोजन है, दो टाइम का नाश्ता है, ये सरकार मुहैया कराती है निःशुल्क, उसके लिए एक ह्यूज अमाउंट मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है, जिससे भारत में हर एक व्यक्ति इस नशे को ना कहे मैम।
1: जी, तो जब व्यक्ति इन केंद्रों पर जाता है कि सुविधाओं का थोड़ा जिक्र कर दें आप कि उस व्यक्ति को अगर वो वहां 35 दिनों तक रहना चाह रहा है स्वेच्छा से तो किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी?
0: मैम देखिए, उनको रहने की व्यवस्थाएं
1: जी
0: उसमें मुहैया की जाती है, उनके भोजन की व्यवस्थाएं, उनके चाय और स्नैक्स की व्यवस्थाएं, उनको फ्रूट देने की व्यवस्था, ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, और इस पूरी नियमित भोजन के दौरान उनको सुबह योगा टीचर आता है, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स उनको डेली आके चेकिंग करते हैं, उनकी दवाएं जो होती है वो सारी निःशुल्क होती हैं, और सारी दवाइयाँ हेल्थ मिनिस्ट्रीज के द्वारा अप्रूव दवाइयाँ वहाँ पे होती हैं, उनको गर्मी न लगे उसकी व्यवस्थाएं भी की गई हैं, कूलर कहीं कहीं तो एसियां भी लगाई गई हैं, कि उनको सारी जो मूल व्यवस्थाएं होती हैं वो भारत सरकार प्रोवाइड कर रहा है। मैं तो आपसे भी अपील करूंगा कि किसी दिन आप अपने टीम के साथ इस हमारी भारत सरकार के केंद्र पे जाइएगा,
1: बिल्कुल
0: और मैं वहां पे निवेदन करूंगा कि आप लोग का वो स्वागत करें और उनके जीवन शैली को आप देखें।
1: जी
0: और निसंदेह एक भ्रांतियां है मैम कि वहां पे उनको चैनलों में बांध दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एकदम हमारे आपकी तरह कॉमन मैन की तरह, लेमैन की तरह होते हैं, जैसे आप घर में ट्रीट करते हैं वैसे ही ट्रीट होते हैं, और सब कुछ अंडर सीसीटीवी कैमरा है, ऐसा नहीं कि आप गए वहां पे बंद करके रख दिया उनको भोजन नहीं, सारी व्यवस्थाएं होती है, और 2 साल तक फॉलोअप लिए जाते हैं, अगर
1: अच्छा
0: 35 डेज के बाद आप छूटते हैं, अगर आप अपने घर जाना चाह रहे हैं आप घर जाइए, और 2 साल तक मिनिस्ट्री उनको पता करती कि वो क्या कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात मैम कि अगर आप उससे रिलेटेड नौकरियां भी करना चाहते हैं तो सरकार कोशिश करती है कि इन सेंटरों पे आपको वहां पे जॉब देने का भी कार्य करती है।

0: जो इससे रिहैब से निकल के आते हैं।
1: बिल्कुल, रिहैब पे भी हम थोड़ी बात आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो नशा है उसे मीठा जहर कह सकते हैं, जो धीरे धीरे असर करता है और व्यक्ति को स्वयं पता नहीं लगता कि वो कब इसका आदि हो चुका है
0: जी।
1: तो नशे से मुक्त होने के लिए अगर एक व्यक्ति कुछ करना चाहे तो वो क्या कर सकता है?
0: मैम देखिए, सबसे पहले तो विल पावर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। अगर आपने ठान लिया कि आज से मैं नशा नहीं करूंगा तो डेफिनेटली दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं करा सकती। लोग कहते हैं संगत से गुण है, संगत से गुण जात है। तो मैम संगत ठीक है, होता है, पर ऐसा नहीं कि किसी ने आपको जोर जबरदस्ती नशा दिया। दूसरा, आपको मेडिसिन के माध्यम से, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया कि सेंटर में आप आके आप दिखा सकते हैं। अगर आप नशा मुक्ति केंद्र पे नहीं जाना चाहते हैं तो आप सीधे चले जाइए CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर की टीम के पास। वहां पे आपको डायरेक्ट बातचीत करके एक काउंसलर के थ्रू काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग से आपका दवा मान जाते हैं, नशा छोड़ने में आप तत्पर हैं, तो आपको ये व्यवस्थाएं की जाएंगी। अगर आप रिपीटेंस नहीं कर पा रहे हैं, आपसे नशा नहीं छूट रहा है, तो आप 35 डेज के लिए हमारे रिहैब सेंटर में आइए। और सबसे ज्यादा जो मेडिकल अप्रूव्ड है मैम, कि योग और आपका मेडिटेशन नशा छोड़ने के लिए बहुत कारगर है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सुबह मैं, गांव में एक भ्रांतियां हैं कि सुबह मैं अगर टोबैको नहीं ले रहा हूं तो मैं फ्रेश नहीं हो पा रहा हूं, या मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है, या आपने देखा हॉस्टल बच्चे कहते हैं कि मैं भांग का, और या तो ये आपके जो सूखे नशे हैं जिसको बनारस में आपने देखा होगा, कहीं भी आपने देखा होगा कि वो जो सिगरेट मांगते हैं या तंबाकू मांगते हैं कि अगर मैं नहीं लेता तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता। तो ये मैडम सारी भ्रांतियां हैं, ये आप जैसे नशे लेने के लिए एक आदि बनते हैं। तो उस ब्रेकिंग पॉइंट को तोड़ने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, अगर सेंटर में आप आ रहे हैं तो 8-8 घंटे पे आपको मेडिसिन दी जाती है। मान लीजिए कि कुछ लोग, आपने देखा होगा मैम टीवियों में आपने देखा होगा, शायद आप कभी जाएंगी तो ऐसे सेंटर पे भी देखने को मिलेंगे, ये बीमारी ज्यादातर जो इंजेक्ट लेते हैं, आप पंजाब में, हरियाणा में, आप हिमाचल में, आप पहाड़ों पर देखेंगे और नॉर्थ ईस्ट एरिया बहुत डेंजरस है। आप देखेंगे कि वहां पे उड़ता पंजाब एक मूवी भी आई थी कि लोगों ने देखा था कि इंजेक्ट ले रहे, नहीं ले पा रहे तो अपनी बॉडी को या तो नोचते हैं या औरों पे अटैक करते हैं। तो उस दौरान 6 घंटे, 8 घंटे या 12 घंटे की गैप जब की जाती है तो उनको एक मेडिसिन दी जाती है कि वो विश्राम के दौर में चले जाए। अगर वो 8-8 घंटे की 3 शेड्यूल बनाई जाती है, 8 घंटा, फिर 16 घंटा, फिर 24 घंटे, ये कॉन्टिन्यूस हमारा 7-डे प्लान होता है मैम, कि हम 7 डे इस नशे को अगर छोड़ने में वो सफल रहा तब तो मैम बहुत ईजी है। अगर वो नहीं छोड़ पा रहे तो 35 डेज के लिए हम सारी मेडिसिन के थ्रू फिर धीरे धीरे हम दवा कम करते हैं। ये पूरा कोर्स है, पहले ये 2 महीने का कॉन्सेप्ट था, अब उसको सरकार ने घटा के 35 डेज इसलिए कर दिया क्योंकि उसमें पेरेंट्स के कई सारे कंप्लेन आते थे कि अब हमारे बेटे ने छोड़ दिया है, ऐसे तमाम चीजें। तो UNO के रजामंदी से WHO और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो इंडिया का है, उन लोगों ने इसको 35 डेज का एक टाइम पीरियड बनाया।
1: अच्छा, इस टाइम विंडो में उसको बांधा,
0: 35 डेज में हम उसको कर रहे हैं।
1: नशा छोड़ने के बाद क्या व्यक्ति फिर से लत की ओर बढ़ सकता है?
0: बहुत चांसेस है मैम, उसका चांसेस ये है मैम, 35 डेज में आप मेरे साथ रहे तो आपको सेंटर में नशा नहीं मिला, इसलिए हो सकता है आपने नशा छोड़ा। जिस दिन आप निकल रहे हो सेंटर से, तो सबसे ज्यादा जो फॉलोअप की बात हम कर रहे हैं मैडम, वो फॉलोअप में यही होता है कि वो पेरेंट्स को एक डिक्लेरेशन साइन कराई जाती है कि यहां से निकलने के बाद आप कोशिश करेंगे कि पिछले आने वाले 2 महीने 1.5 महीने वो दोबारा उस नशे को न ले। अगर मैम वो लेता है तो उसको रोकने के लिए ही फॉलोअप है कि बीच में वो आए और दवा वो लेते रहे, करते रहे, पूरी उम्मीद है कि वो दोबारा जाएगा
1: जी।
0: लेकिन मैम जिनके पास विल पावर है और जो वो छोड़ना चाहेंगे तो वो आज ही उसको क्विट कर सकते हैं मैम।
1: अच्छा सुमित जी, जो नशा मुक्ति केंद्र हैं उसमें अगर महिलाएं भर्ती होना चाहें तो उनके लिए कुछ सुविधाएं अलग हैं?
0: मैम देखिए, अभी भारत में 2 जगह प्रयोग किए गए हैं जो लेडीज चल रही हैं सेंटर, एक तो मैम साउथ में है और एक हमारा मैम नॉर्थ में है। इन दोनों साउथ नॉर्थ में सिर्फ वहां पे लेडीज सेंटर है।
1: अच्छा।
0: चूंकि डिमांड अब आ रही है, पहले ऐसा नहीं था कि महिलाएं भी नशा करती हैं या लोग करते थे, लोग बताते नहीं थे, अब ये रिहैब की प्रश्न आई हुई है तो पिछले 2 बैठकों में ये केंद्रित किया गया है कि अब महिलाओं के लिए अलग सेंटर बनाए जाएंगे, तो उस पर काम चले। अदरवाइज आप सिंगल डे आके उनके इलाज के लिए आप CMO के थ्रू या हमारे इन सेंटर पे आप
1: दवाइयां
0: OPD में आके आप दवाइयां ले सकती हैं।
1: अच्छा जी। अच्छा सुमित जी, नशा मुक्ति के बाद अगर व्यक्ति मुख्य धारा से फिर जुड़ना चाहे तो उसके लिए क्या उपाय?

0: देखिए मैम, नशा मुक्ति कोई वो उनको कोई पागल नहीं बना देता है।
1: जी
0: अगर आप देखिए, नशे से बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग ही होंगे जो जो वो पुनर्वास नहीं हो पा रहे हों। फिर भी जो सरकार ऐसे लोगों के लिए जो 570 सेंटर चल रही हैं, उसमें 15 लोगों का एक पूरी टीम गठित होती है जिसमें जॉब दिए जाते हैं।
1: जी
0: उसमें से दो तीन चार लोग, कहीं कहीं तो पांच पांच लोग, वही नशे करने वाला व्यक्ति वहां पहले रिहाब होता है, फिर आके वहां पे जॉब करता है। तो सरकार ये व्यवस्थाएं कर रही है। बाकी मैम, अगर ऐसे कोई केसेस आते हैं आपके पास, अगर वो पुनर्वास करने के बाद वो कहीं जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए तमाम ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, उनके अंतर्गत हम उनको कुछ फंड्स के थ्रू, चाहे मुद्रा के थ्रू या युवा उद्यमी के थ्रू, हम उनको लोन दिलाने का काम करके उनको एक मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।

0: उनको एक मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। अच्छा, चलते चलते नशा मुक्ति से संबंधित श्रोताओं को आप क्या संदेश देंगे, विशेषकर युवाओं को ध्यान में रखकर?
0: मैम, मेरा तो यही एक संदर्भ है, श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदान मानम निर्वाभ्याम परित्राणायाम साधुनां विनाशकाय च दुष्कृतां धर्म संस्थाप्ताय संभवामि युगे युगे। जब अधर्म और पाप बढ़ेगा तब तक श्री कृष्ण जन्म लेंगे। मैम, ये पाप जो नशा रूपी एक पाप है मैम, इसको दूर करने के लिए मैं अनुग्रहित करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि जो युवा, ना श्री कृष्ण आने वाले, ना बुद्ध आने वाले, ना विवेकानंद आने वाले, ना भगत सिंह आने वाले, अब समाज का युवा उठे और इस नशे को छोड़े और अपने अंदर वो ईश्वर को देखे
1: जी।
0: भारत का जनजी उठे और आज 26 जून के दिन वो संकल्प ले कि भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए सर्वप्रथम भारत को नशा मुक्त करना होगा।
1: बिल्कुल सही बात। सुमित जी, कार्यक्रम में आप आए और इस गंभीर विषय पर हमसे बातें की, हमारे श्रोताओं को संदेश दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू वेरी मच। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद करता हूँ कि आप ऐसे ही हमें आयोजन में बुलाएं और हम निरंतर इस परिचर्चा पे बने रहेंगे।
2: दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये खास बातचीत पसंद आई होगी।
3: दोस्तों, आज हम सीने दर्पण में बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के ऐसे अभिनेता की जिनकी दमदार आवाज, जोशीले संवाद और प्रभावशाली अभिनय ने उन्हें लाखों करोड़ों दर्शकों का प्रिय बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनी देओल की।
2: सनी देओल का जन्म 19 अक्टूबर 1956 को हुआ था। वे हिंदी फिल्म जगत के प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र के पुत्र हैं। फिल्मी परिवार से संबद्ध होने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर उद्योग में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने वर्ष 1983 में फिल्म बेताब से अपनी अभिनय करियर की शुरुआत की, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा।
3: सनी देओल ने अपने करियर में अनेक यादगार फिल्मों में काम किया है, घायल, दामिनी, बॉर्डर, इंडियन और गदर एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को विशेष रूप से सराहा गया। देशभक्ति और न्याय के लिए संघर्ष करने वाले उनके किरदार दर्शकों के दिलों में आज भी जीवित हैं। उनकी फिल्मों के कई संवाद लोगों की जुबान पर आज भी सुनाई देते हैं।
2: बिल्कुल। सनी देओल को उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वे केवल एक सफल अभिनेता ही नहीं बल्कि एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी अभिनय से साहस, देश प्रेम और सत्य के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी है।
3: फिल्मों के अलावा सनी देओल सार्वजनिक जीवन में भी सक्रिय हैं और जनसेवा से जुड़े कार्यों में योगदान देते रहे हैं। उनकी सादगी, अनुशासन और समर्पण युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज भी वे अपनी ऊर्जा और अभिनय क्षमता के कारण दर्शकों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं जितने अपने करियर के शुरुआती दिनों में थे।
2: बिल्कुल। आइए हिंदी सिनेमा के इस दमदार अभिनेता के योगदान को याद करें और उनके स्वस्थ, सुखद एवं सफल जीवन की कामना करें। इसी के साथ पेश है ये गीत।

0: तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है?
1: सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर।
2: बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है।
1: पर कैसे?
2: RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान।
0: रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ।
2: बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
4: इसी के साथ साथियों, अब बारी आ गई है हमारे शब्दों के पिटारे को खोलने की और जानने की कि क्या है हमारे आज के नए शब्द। तो आज का हमारा हिंदी का शब्द है अभिस्वीकृति, जिसका मतलब है किसी प्रस्ताव, निर्णय, कार्य या विचार को औपचारिक रूप से स्वीकार करना या स्वीकृति प्रदान करना। और अगर आप इस शब्द से वाक्य प्रयोग करना चाहते हैं तो इस प्रकार कर सकते हैं। विश्वविद्यालय से शोध विषय की अभिस्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू किया गया।
5: और इसी के साथ आज का हमारा अंग्रेजी का शब्द है अमिकेबल, विच मीन्स फ्रेंडली, पीसफुल एंड शोइंग गुडविल विथआउट कॉन्फ्लिक्ट और हॉस्टिलिटी, और हिंदी में कहें तो मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, मित्रवत। और आप इस वर्ड से सेंटेंस फॉर्मेशन इस प्रकार कर सकते हैं, दे रिच्ड एन एमिकेबल एग्रीमेंट आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशंस।
4: और इसी के साथ दोस्तों, जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतजार, वो घड़ी आ गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की।
5: लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि हमने आपसे कल क्या पूछा था और उसका सही जवाब देकर विनर्स कौन बने हैं।
4: तो हमारा कल का क्वेश्चन था कि किस भारतीय प्रधानमंत्री को राजा मांडा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका सही जवाब है विश्वनाथ प्रताप सिंह। और इसका सही जवाब देकर जो विनर्स बने हैं उनके नाम है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधे श्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार डाक से। ग्राम खेगांव तहसील महेश्वर से हैं प्रेमला वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा। वही रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से हैं सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा। नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं प्रभुदया, शिवदेव, शिवा, बसंती बाई और गणेश सिवदे। वही संगीत की नगरी खंडवा से है श्याम बाई रायकवर और चंदा चंदौली से मुकेश कुमार प्रजापति वाराणसी से। आप सबको बहुत बहुत बधाई। इसी तरह आप हमें भेजते रहिए आंसर्स और बनते रहिए डेली के विनर्स।
5: और आज का हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना CGHS लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण

0: मेडिक्लेम आयुष बीमा किस संगठन ने शुरू किया है?
1: मैं क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर दे रही हूँ। केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना CGHS लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा किस संगठन ने शुरू किया है? और इसका सही जवाब हमारी इंस्टा आईडी youth वाराणसी पर या फिर हमारी मेल आईडी youth पर भेज सकते हैं।
0: इसी के साथ दोस्तों, चलिए ये भी जान लिया जाए कि आज ही के दिन इतिहास में क्या कुछ खास घटित हुआ था, क्योंकि उसे भी तो जानना जरूरी है।
1: बिल्कुल, आज ही के दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। और 1975 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की।
0: और 1995 मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया घोषित किया गया।
1: और इसी के साथ 1974 में दुनिया में पहली बार बारकोड UPC का व्यावसायिक उपयोग किया गया।
0: दोस्तों, हमेशा की तरह हम फिर लेकर आए हैं आपके सपनों को नई उड़ान देने वाली कुछ खास रोजगार सूचना।
1: भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा SBI PO रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस भर्ती के अंतर्गत कुल 1500 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 जून 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 8 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
0: इस भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी एवं आवेदन के लिए उम्मीदवार sbi.bank.in पर विजिट कर सकते हैं।
1: फिलहाल वक्त हो चला है इस गीत का।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: जिन्हें राजर्षि शाहू महाराज के नाम से भी जाना जाता है। वे कोल्हापुर की रियासत के एक दूरदर्शी राजा और भारत के एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने जीवन में शोषितों, वंचितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए जो कार्य किए वे अद्वितीय हैं।
1: बिल्कुल, उन्होंने अपनी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाया था, जो उस दौर में एक क्रांतिकारी कदम था। महिलाओं की शिक्षा, अंतरजातीय विवाह का समर्थन और जातिवाद के खिलाफ उनका संघर्ष आज के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। एक समतामूलक समाज का जो सपना उन्होंने देखा था, उसे आगे बढ़ाना ही उन्हें हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
0: बिल्कुल सही कहा मोनी। तो दोस्तों, आज के इस अंक में हमने नशीली दवाओं के खिलाफ संकल्प लिया, इतिहास को जाना, नए शब्दों को सीखा, सनी देओल के सफर को याद किया और करियर की राहें भी देखी। उम्मीद है आज का ये अंक आपके लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरक रहा है।
1: इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: दोस्तों, देखते ही देखते हमारा आज का यह सफ़र अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है। लेकिन समापन की ओर बढ़ने से पहले, आज एक बहुत ही महान विभूति की जयंती है, जिन्हें याद करना और नमन करना हम सबका कर्तव्य है। आज छत्रपति साहू महाराज की जयंती है।
1: जी हाँ मोनी, छत्रपति साहू महाराज।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचार के साथ हम सुकेत त्यासाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया में 456 करोड़ रुपया से बेसी लागत वाला कई गो विकास परियोजना का लोकार्पण कैले नई धैले। ये मौका पर श्री योगी कहले कि डबल इंजन के सरकार जवन सुरक्षा आ विश्वास का वातावरण बनौले हवे वही के नतीजा हो कि देवरिया, गोरखपुर आ कुशीनगर के साथ ही पूरा प्रदेश में निवेश आ रहा हो, उद्यम लाग रहा बा और हमारे प्रतिभावान नौजवानन के रोजगार मिल रहा हो।
1: देश ही नहीं दुनिया के अंदर सबसे युवा ताकत किसी के पास है तो हम गौरव के साथ कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के पास है। हमारी युवा शक्ति प्रतिभावान है, ऊर्जावान है। आज उस युवा की स्किलिंग के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उस युवा को रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं। 9 लाख नौजवानों को हमने नौकरी दी है। परंपरागत उद्यम को पुनर्जीवित करते हुए 3 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाई है।
0: कार्यक्रम के दौरान अयोध्या प्रकरण पर मुख्यमंत्री कहले कि अयोध्या भारत के सनातन आस्था का प्रतीक हो, हमारी आस्था से खेलवाड़ कैले का छूट केहू के नहीं दिया जाए।
1: एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं, सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा।
0: यूपी पुलिस श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान मामला में दर्ज पहला एफआईआर में नामजद 8 लोगों के गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ कर रहा हवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल एसआईटी के सिफारिशन के बाद एफआईआर दर्ज कर गई रहे। ट्रस्ट का सदस्य कृष्ण मोहन के लिखित शिकायत पर श्री राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर गई रहे। एफआईआर में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष

0: कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमा शंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टीमू के सतही और अज्ञात आरोपित लोगों का नाम शामिल हवे। लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत के अध्यक्षता वाला एसआईटी मंगर के सरकार के आपन प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दियालस। एमए मामला में कड़े सिफारिश कल गई रहे। एक बाद काली एफआईआर दर्ज कल गई और आज उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश कल गई। स्वास्थ्य मंत्रालय दवाई के नियम में संशोधन का मसौदा जारी कर लिया है। इसमें आयात कैल जाए वाला दवाई का बचल वैधता अवधि यानी सेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीना होखल जरूरी बाटे। जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतवार के आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपन विचार साझा करी हैं। ई मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां कड़ी हुई। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन का सज्जो चैनल, एआईआर न्यूज का वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर कई जाये। सतही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर एक सोझे प्रसारण हुई। हिंदी प्रसारण के जुड़ते बाद क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण कई जाये। आज आशुराए मुहर्रम हो। ई दिन पैगंबर मोहम्मद का नवासा हजरत इमाम हुसैन का शहादत का प्रतीक हो। हजरत इमाम हुसैन और उनका साथी लोग करबला में सत्य अन्याय के रक्षा बदे अपन प्राण का आहुति दिया ले रहा ले। आज के दिन में प्रदेश का राजधानी लखनऊ के सतही कई गो शहरन में शहीद लोगों के याद में ताजिया निकाल जा रहा हो। एक लेके प्रदेश भर में यातायात के बारे में चेतावनी जारी कल गई हो और सुरक्षा के पुरहर इंतजाम कल गई हो। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौका पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नशा मुक्ति समाज के दिशा में हर मन के जागरूक के एगो बेहतर कल की ओर बढ़ने का आह्वान कर लिया है। एगो सोशल मीडिया पोस्ट में श्री योगी कहले कि नशा मनई समाज और देश के विकास में बाधा हो। ई मनई का सोच स्वास्थ्य और भविष्य तीनों के कमजोर करेला। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। वक्त हो चला है आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की जानकारी देने का। तो आइए जान लेते हैं आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज रात 10:30 पर सुनिएगा सितार वादन। कलाकार होंगे विदुषी डॉक्टर श्रावणी विश्वास।

श्रोता सुगम संगीत का आनंद लेंगे। रात्रि 8 बजे हमारे आज के कलाकार हैं जगजीत सिंह और लता मंगेशकर। गैर फिल्मी गीतों और गजलों कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे पशुपालन हेतु सरकारी सुविधाएं विषय पर डॉक्टर संतोष कुमार गिरी और सतीश कुमार यादव की बातचीत।

भिंडी की खेती विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। कार्यक्रम होगा खेती की बातें। समय होगा कल प्रातः 6:05। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुनेंगे कल प्रातः 6:10।

जन्मजात हृदय रोग कारण और बचाव के उपाय, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर प्रतिभा राय। समय होगा कल प्रातः 6:35, कार्यक्रम होगा स्वास्थ्य चर्चा। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ आप सुन सकते हैं कल प्रातः 6:40 पर। गुड मॉर्निंग बनारस, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल प्रातः 7:00। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में कल प्रातः 7:31 पर सुनिएगा बांसुरी वादन। कलाकार होंगे डॉक्टर रानीश कुमार ग्यावाली।

श्रोता लोक संगीत का आनंद लेंगे। कल प्रातः 9:50 पर हमारी कल की कलाकार हैं प्रेमलता भारती। हेलो फोन फरमाइश, ये कार्यक्रम में सुनेंगे दिन में 11 बजे, प्रस्तुति होगी अरुण पांडे की। कहकशां गैर फिल्मी गीतों गजलों कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12 बजे। ये थी जानकारी आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: नो कहा अब तुम हो जवा मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: अभी आपने सुना फिल्म तीन देवियों का गीत। आवाजें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की, शब्द रचना मजरूह की थे और संगीत एस डी वर्मन का।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
5: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपना यह नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
4: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
5: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
4: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
5: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: मुकेश की गाय फिल्म उपकार के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम ही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
7: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्य वार्ताः। गृहमंत्री अमित शाहः मादक द्रव्यानां विरुद्धं संयुक्त संघर्षस्य आह्वानं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् मादक द्रव्यानां विभीषिका राष्ट्रिय सुरक्षायाः यूनां भविष्यस्य कृते च संकटं जनयति। अयोध्यायाः राम मंदिर दान राशि स्तेय प्रकरणे अष्टौ जनाः निगडिताः। पैक सिलिका संधौ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपूर्ति श्रृंखलायै भारतेन सह चतुस्त्रिंशत् देशानां हस्ताक्षरं जातम्। मुहर्रम पर्वणि प्रधानमन्त्रिणा हजरत इमाम हुसैनस्य त्यागाः संस्मृताः। अपि च क्रीडावार्तासु, यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायां भारतस्य युवा क्रीडकः रौनक चौहानः चीनी ताइपे क्रीडकं चौ तिएनचेन इत्यमुं पराजित्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन अद्य मादकद्रव्यानां विरुद्धं संयुक्तसङ्घर्षस्य आह्वानं विहितम्। मादकद्रव्यानां प्रकोपः राष्ट्रियसुरक्षायै, सामाजिकस्थिरतायै, आर्थिकहिताय, यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिकनेतृभ्यः, युवभ्यः, मातृभ्यः अस्य सङ्घर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुं च आग्रहम् अकरोत्। श्रीशाहः नवदिल्ल्यां नार्को कोऑर्डिनेशन केन्द्रस्य दशमशीर्षस्तरीय सभाम् अभिसंबोधयन् एतानि वक्तव्यानि प्रायच्छत्।
8: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे

0: संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: श्री शाह अवोचत यत् चतुरोत्तर द्विसहस्रतः चतुर्दशाधिक द्विसहस्र पर्यन्तम् अधिकारिणः प्रायः 26 लक्ष किलोग्राममितं संश्लेषित मादक द्रव्याणि गृहीतवन्तः। तस्यापेक्षया 14 अधिक 2000 तः 26 अधिक 2000 पर्यन्तं गृहीतानि संश्लेषित मादक द्रव्याणि 8.11 मिलियन किलोग्राममितं यावत् वर्धितम्। सः अवोचत् यत् मादक द्रव्याणां व्यापारस्य विरुद्धं सर्वकारस्य अभियानम् अविरतं प्रगतिं कुर्वदस्ति इति अंकैः ज्ञायते। मादक द्रव्याणां निवारणस्य प्रयत्नानां विषये श्रीशाहः अवोचत् यत् नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इत्यनेन मादक द्रव्याणां अपराध सम्बद्धानां सूचनानां समयोचित आदान प्रदानार्थम् अनेकानि ऑनलाइन पटलानि विकसितानि सन्ति।
0: पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस। इसका उद्देश्य है पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य अवोचत् यत् नशा मुक्त भारत अभियानम् जनसहभागित्वेन चालितं जनान्दोलनं जातम्। मादक द्रव्य मुक्त भारत निर्माणस्य महत्व विषये सामाजिक न्याय सशक्तिकरण राज्य मन्त्रिणः बीएल वर्मणः लेखं विनिमय कुर्वन् श्रीमोदी एतत् अवोचत्। उत्तर प्रदेश आरक्षकेण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासस्य दान राशि स्तेय प्रकरणे FIR इति प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण 8 जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य निर्देशने विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसनानन्तरं पञ्जीकृतमासीत्। इदं प्रकरणं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासेन प्राप्तानां उपहाराणां दानानां च स्तेय सम्बन्धिनाम् आरोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधे मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन एकस्य SIT दलस्य गठनस्य आदेशः प्रख्यापितः। न्यासीय सदस्यस्य कृष्णमोहनस्य लिखित अभियोगाधारेण श्रीराम जन्मभूमि आरक्षक केन्द्रे अयम् अभियोगः प्रविष्टः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। ह्यः वाशिङ्ग्टन् नगरे आयोजिते द्वितीये पैक्सिलिका शिखर सम्मेलने भारतेन सह अन्यैः 34 देशैः कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रविधीनां विकासाय विश्वसनीय दृढ आपूर्ति श्रृंखलायाः निर्माणार्थं अमेरिका नेतृत्वे एकस्मिन् महत्वपूर्ण प्रस्तावे हस्ताक्षरं विहितम्। आर्थिक विषयानाम् अमेरिका उपसचिवः जैकब हेलबर्गः अवोचत् यत् AI अवसरे संयुक्त विवरणम् इत्यस्य अन्तर्गतं प्रतिभागी देशाः AI युगे विकासानुकूलं नवीनतानुकूलं च नियामक दृष्टिकोणं प्रति सहमतिं प्रदर्शितवन्तः। प्रतिनिधिभिः सह संवादे श्री हेलबर्गः प्रत्यपादयत् यत् अमेरिका भारतेन सह स्वस्य सहभागितां सुदृढीकर्तुं सोत्साहम् अग्रे आयाति। अस्मिन् शिखर सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधित्वं इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालयस्य सचिवेन S. कृष्णन् महोदयेन अथ च भारतीय उद्योग क्षेत्रस्य प्रतिनिधिभिः कृतम्। अद्य देशस्य विभिन्न भागेषु आशुरा ए मुहर्रम पूर्ण श्रद्धया गांभीर्येण च आचर्यते। अयम् दिवसः पैगंबर मोहम्मदस्य दौहित्रस्य हजरत इमाम हुसैनस्य वीरगतिं संस्मरति। हजरत इमाम हुसैनः कर्बला युद्धे सत्यस्य सदाचारस्य न्यायस्य च रक्षणार्थं स्वप्राणाहुतिं अयच्छत्।

0: अस्मन्नवसरे देशे स्थाने स्थाने ताजिया यात्राः निष्कास्यन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य हजरत इमाम हुसैनस्य त्यागं संस्मृतवान्। सामाजिक अंतर्जालीय माध्यमेन प्रेषिते संदेशे तेनोदीरितं यत् हजरत इमाम हुसैनस्य जीवनं सत्यस्य न्यायस्य च पथि दृढ़तया स्थातुं अद्यापि जनान् प्रेरयति। अत्रावधेयं यत् राष्ट्रीय राजधान्यां देहल्यां जामा मस्जिद, निजामुद्दीन, ओखला, महरौली इत्यादिषु विभिन्न प्रमुख स्थानेषु मोहर्रम यात्राः आयोज्यन्ते। भारतस्य विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः अस्य मासस्य चतुर्विंशति पञ्चविंशति दिनांकयोः दक्षिण कोरिया देशस्य आधिकारिक यात्रां विहितवान्। स्वयात्रावधौ डॉ जयशंकरः द्विपक्षीय संबंधान् सुदृढीकर्तुं दक्षिण कोरियायाः विदेशमंत्रिणा चो ह्यून इत्यनेन सह विस्तृतां उच्चस्तरीय चर्चां विहितवान्। उभाभ्याम नेतृभ्याम अनेक प्रमुखाणां क्षेत्राणां सहयोगस्य समीक्षा कृता, यत्र व्यापार निवेशौ वित्तीय सहयोगः, रक्षा सुरक्षा प्रविधयः, नवाचाराः, संस्कृतिः, शिक्षा तथा च परस्पर जनसंपर्कः सम्मिलिताः सन्ति। ताभ्यां क्षेत्रीय वैश्विक परिदृश्यानां विषये अपि विचाराणां विनिमयीकरणं कृतं तथा च बहुपक्षीय मंचेषु सहकार्यं वर्धयितुं उपायानां विषये मंत्रणा कृता। विदेश मंत्रालयानुसारं द्वाभ्यां मंत्रिभ्यां भारत दक्षिण कोरिया संबंधेषु नूतन गतिशीलतायाः स्वागतं कृतं। सहैव भारत दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक संधिं इतोपि अग्रे नेतुं अविरतं संपर्के स्थातुं सहमतिः प्रकटीकृता। भारतस्य रौनक चौहानेन अद्य फुटलन नगरे यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायां चीनी ताइपे इत्यस्य पुरुष एकलस्य क्रीडकं चाउ टियेन चेन इत्येतं 1:17.17.24 अंकैः पराभूय प्रागुपान्त्य चक्रीय द्वन्द्वे पदार्पणं कृतम् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं किसान भाई कार्यक्रम कृषि जगत।

0: पंचो राम राम।
1: राम। बिरजू भैया,
0: हाँ सुधो भैया।
1: देखा हो इस समाज हो
0: भैया।
1: जहाँ हम तू रहत ही, ए मन सुख दुख लगल लाला,
0: का
1: एक
0: है
1: सिक्का
0: भैया।
1: के दो पहलू के तरह
0: हाँ
1: है।
0: भैया। हाँ हाँ
1: कहीं देखा तो क्यों जन्म भइले पर जन खूब बधावा गावत बा, कत्तो कत्तो देखा तो भाई लोग शोक मनावत हुआ है ना,
0: देखा भैया,
1: क्यों दुनिया छोड़ के गए थे।
0: सुख दुख भी दोनों बहुत जरूरी है भैया, तब न अनुभव हुई।
1: बिल्कुल। तो आज देखा, आज के जौन दिन हो मुहर्रम, जौन अपने इस्लाम धर्म के मानने वाले भैया लोग हुए है ना, उन जौन हो देखा मुहर्रम का जौन मनावत हो ना, इमन यही वजह से कि जौन पैगंबर मोहम्मद का नाती रहना इमाम हुसैन
0: इमाम हुसैन
1: है ना,
0: साहब।
1: उस सच्चाई के लड़ाई बदे, सच और ईमानदारी और न्याय बदे के अपन समझ ला कि बलिदान कर देना, बाकी तो अन्याय का अधीनता स्वीकार ना कहीं देना
0: ना ना ना
1: है
0: भैया,
1: ना।
0: एकदम ना।
1: तो ये जौन मनावल जात हो मुहर्रम, एक ऐसे प्रेरणा लेवे की जरूरत हो कि जान भले चल जाए लेकिन अन्याय का अधीनता ना स्वीकार करो।
0: भैया अपने आन पयाच आवत तो पीछे ना हटे के चाहिए।
1: तो आज देखला अपने जौन इस्लाम धर्म के मानने वाले भैया लोग हुए ना, तो काला कपड़ा पहन करके जौन हो उनके
0: अपन
1: शहादत में
0: शोक प्रकट करावा।
1: शोक प्रकट करना, और तरह तरह का देखा ताजिया सजा उजा करके जौन हो ओके ले जा करके बैठावा ना। तो कहे का मतलब यह हो कि भाई कुछ ऐसा भी पर्व आ जाला जमन की देखा सुख नहीं बल्कि दुख का अनुभव होला
0: आ
1: है
0: देखा
1: ना।
0: भैया, उनके शहादत में लोग उपवास भी करावा
1: हाँ हाँ
0: 10 दिन
1: कुछ
0: तक।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो है देखा भाई, इत अपने समाज का

0: एक परंपरा हो, है ना, जेके भैया लोग करत हुआ। बाकी तो रहल बात जो अपने खेती और बाड़ी बगीचा का
1: एकदम भैया सही कला है
0: भाई,
1: कि
0: वो भी एक साथे साथे तो बहुत जरूरी हो ना।
1: ये भैया कहल जाला ना कि दुख सुख तो लगल रही लेकिन जे बा ना वो आगे का अपन काम ना देखी ना तो कैसे हाल रोजगार चली। तो
0: एकदम
1: हमन
0: सही
1: किसान
0: बात
1: है जब
0: बा,
1: भैया तो खेती
0: बिल्कुल।
1: बाड़ी तो जरूरी है।
0: अब बारी जौन हो वो खेती का समझ ला कि आधा हिस्सा बा, है
1: हाँ
0: ना,
1: वे अंग है
0: यही से खेती और बारी साथे साथे देखा जुड़ल हो, जुड़वा भाई के तरह।
1: जुगल शब्द है भैया।
0: हाँ, तो बारी बगीचा जो देख ला, मौसम तो बड़ा अनुकूल ना चलत हो बगीचा बदे के। बाकी तब बगीचा भी हो भैया बिरजू, बड़ा नगदी पैसा दे देला देखा। अब हमार आम समझ ला कि संभार देले रहल है। हाँ, बगीचा जो देखा बब्बा लगाए कि गल रहना है भाई, पेड़ तो छोटवारे रहल है, बाकी खूब फर देले से। अब बाजार में मांग भी बढ़िया रहल हो कर, अब थोड़ बहुत तो वहीं बचल बा,
1: भैया देखा अमन
0: बुझल।
1: किसान है जा आ खेती के साथ साथ बाड़ी बगीचा का तो सब ही किसान भैया क्यों एक ठे दू ठे क्योंकि सयार भैया खेत बता मजे के 10-20 लगौले बा।
0: लगौले तो बा, बाकी जो लगल बा वो तो लगल बा, आउ लगावे के जरूरत हो।
1: जरूरत है। आ देखा कहल गल भैया कि पेड़ लगौले के मोल ना है ओकर देखभाल भी बहुत जरूरी है।
0: अरे देखभाल छोटवार लड़का के तरह करे के होला, है ना, समझ ला कि जैसे ओके अंगुली पकड़ के चलावे सिखावे के होला ना। और ओकरे बाद जब वो अपने बले चलला तो हमार तोहार बुढ़ौती जब आवेले तो वो हम तोहार सहारा करला,
1: तो देखा
0: है ना, वह
1: पूरा
0: कन्हा पकड़ के जोनो चली
1: देखा पुरनिया लोग
0: चलाई।
1: कहला ना कि पेड़ लगावा पेड़ा खा तो भैया को सेवा करवा तब ना पेड़ा
0: एकदम
1: मिली।
0: वह बात बा कि अगर
1: हाँ
0: सेवा कैला संभार देला
1: हाँ
0: अपने हाथे गोड़े का, वो होए गल पेड़ पौधा, तो हम तुम्हें छाह दे, लकड़ी दे, फल दे, फूल दे, कुल प्रदान करी। बाकी तो शुरुआत में ओके गेड़ के घेर घार के, है ना, चाहे बसाटा से, चाहे समझ ला कि
1: हाँ
0: जाली से, जैसे भी संभव हो सके
1: आ देखा
0: ओके
1: भैया
0: देखा के जरूरत हो।
1: घेरल तो माला जरूरी है लेकिन संगे संगे ओकर पोषण बदे भैया ये भी ध्यान देगा कि वयस्क अगर पेड़ हो गल है तो सड़ल गोबर का खाद 5 से 10 किलो हरेक पौधा के थल्ला बना के दे देवे के
0: बाकी
1: चाही।
0: हम तो कहब कि भाई पहले माटी के जांच ओकर करवा ले
1: हाँ हाँ
0: जल्ला ना,
1: ये तो
0: कि
1: भैया
0: पीएच मान कितना हो वहाँ का, अ कौने
1: हाँ
0: कौने चीज का संस्तुति अपने विज्ञानी भैया लोग कहत
1: हाँ
0: हुआ।
1: भाई जवान वो माटी अगर मांगत है उतना वो के दात तत्व।
0: अरे भैया बताई तो से कि एक जने का कहना ना कि नीमी के खरी के उनसे बताए देलेस, ले जाए के इतना डाल देना कि पेड़ जर गल,
1: हाँ नहीं
0: बुझल।
1: भैया वैज्ञानिक
0: ओकर एक
1: भैया
0: अनुपात होला हर चीज
1: वैज्ञानिक
0: के।
1: भैया यो लोग कहना कि नीम का तेल 5 ग्राम पानी में लेके 5 ml आपके छिड़काव के लिए पत्ती पर भी बहुत लाभकारी होला
0: हल
1: भैया।
0: लाभकारी होला। बाकी तो दिखा ओकर जो पैमाना बनावल हो ओकरे हिसाब से प्रयोग करब तब। और अगर तैसे गाढ़ा कर देला ओके, पानी डाले में कंजूसी कर देला या ठीक से ना मिलौला तो पत्ती जर जाए, इहो जान ले, जान ले ना। तो भाई संस्तुत मात्रा और संस्तुत तरीका जो विज्ञानी भैया लोग बतावे ओके पालन करते हुए प्रयोग करब, तो निश्चित रूप से देखा वो पौधा बड़ हुई, फली फूली, है ना, और समझ ला कि आगे तोहें इतनी आगे तोहें के नहीं बल्कि आओ वाली पीढ़ी के। अब जैसे बब्बा का लगावल आम खात हुआ ना, तो अपनों कुछ लगावा कि तोहरों नाती पोता आए के कहें कि हमरो बब्बा
1: भाई
0: लगौले रहना।
1: देखा जहाँ आम बाऊ अगर उजड़ जाता तो अपने वहाँ फिर लगावा ताकि भाई बाड़ी बगीचा तोहार उजड़ल ना अगर सही सलामत रह। आ देखा ये भैया जहाँ हल्की मट्टी वैसे बलुई दोमट जे के कहल जाला कि हम पानी देवा तुरंत सूख जी तो ओकरे भैया 5-6 दिन पे पानी देवल करा। आज हम मटियार बा चिकनी मिट्टी बा जहाँ वहाँ पंद्रह से
0: जहाँ
1: बीस
0: पानी
1: दिन
0: रुका
1: में
0: लाता नहीं।
1: हाँ 15 से 20 दिन पर दिया ही तो कोनो आकाज ना वसुधु भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहत हुआ। और एकरे साथ साथ समझ ला कि ये जो मौसम चलत हो ना, एक मन तो विशेष ध्यान देवे के जरूरत हो। और कभी कभी यो ध्यान दे ले रहे कि कहीं देवका ओका तो ना लगत हो ना,
1: हाँ
0: देवका
1: भैया
0: देवका ही जमीन रह ले तो समझ ला वो ऊपर से तो पौधा दिखाई हरा भरा, धीरे धीरे सूखत चल जाए जब जड़े में लग जाइए
1: बलुई
0: तो
1: दोमट मिट्टिया में भैया
0: ढेर।
1: अधिकतर देवका लगल है।
0: हाँ, तो
1: हाँ
0: ई बात के भी ध्यान देवे के जरूरत हो कि अगर पौधा का रंग बदलत हो, स्वस्थ ना दिखात हो, तो तुरंत जो हो विज्ञानी भैया लोग से पूछें।
1: पूछा
0: हाँ,
1: आ
0: ओकर
1: ओकर
0: जांच करा ले जरूर
1: उपचार
0: से।
1: करावा।
0: तो हे बिरजू भैया,
1: भैया
0: हम कहे कि बत कही तो हमन के खेती किसानी का आगे चलत रहे, बाकी पहले सनेस हो जाए तब आगे बढ़ल जाए।
1: एकदम भैया सुनवा दे।
2: सुनो ना।
3: हाँ,
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ,
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूँ।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक

0: जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
2: 0542227658।
1: ओ
3: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 0542227658।
4: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
5: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
4: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
5: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
4: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
5: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: हाँ
7: पंच भैया सुन लेना।
6: हाँ हाँ,
7: हम जो बात कही करत रही जैसे बारी बगीचा का,
6: है
7: न, समझ ला कि एकदम वही के साथे जुड़ल अपन पशुपालन का भी धंधा हो। जल्ला न इो बहुत नगदी देखा मिल जाला।
6: हाँ,
7: अपन काम बहुत संभार देला। जल्ला न बाकी तो जानकारी हुए के चाहिए न हो कि अपन जो पशु पाले हम जात है या जो पलले है ओके कवन जरूरत हम बोलता हूँ, है ना, तो ओकरे विषय में कुछ ना कुछ जो है जानकारी होके चाहिए। और दूसरा बात यह है ना कि सरकार की तरफ से भी बहुत प्रोत्साहित करे
6: के
7: योजना चलत है।
6: बहुत चलल भैया,
7: तो कुछ योजना के जानकारी हम कही कि तोहरे बा कि पंच भैया लोगन के है विशेषज्ञ भैया के बात कही से जानकारी दीवा
6: जो डॉक्टर भैया उनसे जानकारी हम ले
7: तो हम कहीं सुना तो तुरे ना जानकारी हो तो पंच भैया भी सुने। डॉक्टर संतोष कुमार गिरी से सतीश कुमार यादव भैया बतियोले हो कि पशुपालन बदे जो सरकारी सुविधा मिलत हो
6: का का मिलत है। हाँ ठीक।
8: आज हमने उनके बीच में आयल हैं डॉक्टर संतोष गिरी जे की पशु चिकित्सा अधिकारी हुआ जमालपुर मिर्जापुर में। आज हमने लोग इनसे जानल जाई कि पशुपालन बदे सरकारी सुविधाएं कौन कौन है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका हमन की कार्यक्रम कृषि जगत में स्वागत है।
9: सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार।
8: तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आप हमारी किसान भेलों के ई बताएं कि जे भी किसान भाई अगर पशुपालन कैल चाहत है या पशुपालन कैले है तो जो सरकार का कुल योजना है ओकर मूलभूत संरचना का है, ये बारे में आप हमारी किसान भैरों के बताएं।
9: देखिए पशुपालन विभाग की जो मूलभूत संरचना है इसके अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड ग्राम स्तर पर एक राजकीय पशु चिकित्सालय एवं पशु सेवा केंद्र उपस्थित है और इन पशु चिकित्सा राजकीय पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सा अधिकारी नियुक्त होते हैं।
8: अच्छा।
9: और पशु सेवा केंद्र पर पशुधन प्रसार अधिकारी। और इसके अलावा जब अगर जनपद मिर्जापुर की बात करें तो हमारे जनपद में कुल 27 राजकीय पशु चिकित्सालय हैं एवं 27 पशु सेवा केंद्र भी हैं।
8: अच्छा।
9: और इन्हीं दो संस्थानों में पशुपालक अपने पशुओं के संपूर्ण इलाज, बधियाकरण, चिकित्सा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण आदि इतनी सेवाएं यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं।
8: जैसे कि आप बताओ थे कि तमाम सुविधा और तमाम जोन की पशुपालन बदे हमनी के जरूरत है ये सब तो सुविधा हमनी के सरकार की तरफ से मिलत ही है। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानल चाहब अपने किसान भैया लोग बदे कि अगर वो लोग पशुपालन कल चाहत हो तो वो लोग सबसे पहले क्या करें?
9: देखिए पशुपालन के लिए आपको सबसे पहले अपने जो निकटस्थ पशु चिकित्सालय है वहाँ पर जो नियुक्त पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क करें और जो सरकार द्वारा चल रही जो योजनाएं हैं उनके विषय में पूरी तरह से जानकारी हासिल करें। अब जैसे इस समय पशु पंजीकरण पर जोर दिया जा रहा है।
8: अच्छा।
9: जैसे फार्मर रजिस्ट्री के बारे में लोग बात करते हैं उसी तरह से पशु पंजीकरण भी बहुत ही एक अनिवार्य चीज है। इसके अंतर्गत सभी पशुपालकों को अपने पशुओं का पंजीकरण कराना चाहिए। एक ऐप है जिसका नाम है भारत पशुधन ऐप, इस पर पशुओं का पंजीकरण होता है तो जो हमारे विभाग के पैरावेट्स या पशु मित्र होते हैं ये पशुपालक के द्वार पर पहुंचकर उनके पशुओं के कान में 12 अंक का एक टैग होता है उसे ये लगाते हैं और उसके बाद पशु का विवरण और पशु के स्वामी का विवरण इन दोनों चीजों को पशुधन ऐप पर फीड किया जाता है।
8: अच्छा।
9: तो एक तरह से ये समझिए कि पशुओं की जन्म कुंडली तैयार हो जाती है हमारे ऑनलाइन और जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं ये जब तक आपका पशु पंजीकृत नहीं होगा ये सुविधाएं से आप वंचित हो जाएंगे।
8: अच्छा, तो मतलब कोनो सुविधा लेबे कहो तो सबसे पहले अपने पशु को पंजीकरण करावे के। अच्छा, पंजीकरण के बाद वो लोग क्या कराएं?
9: जैसे पशु पंजीकृत हो जाते हैं तो इसके बाद जैसे

0: हमारे विभाग द्वारा अन्य टीकाकरण कार्यक्रम समय समय पर चलाए जाते हैं, जैसे कि खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण हो, गला घोंटू लंपी स्किन डिजीज का रोग हो, फिर छोटे पशुओं में जैसे बकरियों में पीपीआर का टीकाकरण हुआ। तो ये टीकाकरण निःशुल्क तभी पशुपालक प्राप्त कर सकते हैं जब तक जबकि उनका पशु पूरी तरह से पंजीकृत हो।
1: अच्छा
0: इसके अलावा भी जैसे कृत्रिम गर्भाधान होता है, तो इसमें भी निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान का प्रावधान है उन पशुओं के लिए जिनके कान में टैग लगे हैं।
1: अच्छा
0: और इसके अलावा जो हमारी सरकारी दरों पर कृत्रिम गर्भाधान होती है, जैसे कि एक तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान होता है, और एक अगर आपको बछिया के लिए अगर आप सीमेन चढ़वाना चाहें तो इसके लिए सेक्स सीमेन का उपयोग किया जाता है, और ये सरकारी दर जो 100 रुपये है उस पर ही जो पंजीकृत पशु हैं उनको

0: निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान का प्रावधान है उन पशुओं के लिए जिनके कान में टैग लगे हैं।
1: अच्छा,
0: और इसके अलावा जो हमारी सरकारी दरों पर कृत्रिम गर्भाधान होती है, जैसे कि एक तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान होता है, और एक अगर आपको बछिया के लिए अगर आप सीमेन चढ़वाना चाहें तो इसके लिए सेक्स सीमेन का उपयोग किया जाता है, और ये सरकारी दर जो 100 रुपये है उस पर ही जो पंजीकृत पशु हैं उनको ही ये सुविधा दी जाती है।
1: तो डॉक्टर साहब, जो ना आप ये सुविधा लेवे के बात कहते हैं हमारे किसान भेल उनके, तो ये बताई कि जैसे आप कृत्रिम गर्भधारण के बात कहत रहनी है कि ओकरी बदे जो बछिया बदे 100 रुपया का
0: जी
1: टीका है, तो ऐसे ही का हर टीका कुछ अलग से शुल्क लगा था कि बस यही बदे है?
0: नहीं, देखिए विभाग द्वारा जितनी भी ये सेवाएं हैं वो पूर्णतः निशुल्क है,
1: अच्छा।
0: टीकाकरण पूर्णतः निशुल्क है। इसके अलावा जो पशु चिकित्सा होती है, जो आप सरकारी संस्थाएं जैसे हमारी राजकीय पशु चिकित्सालय हैं या पशु सेवा केंद्र हैं, वहां पर सरकारी दर बड़े पशुओं के लिए 5 रुपये निर्धारित की गई है, छोटे पशुओं के लिए 2 रुपये है, और अगर कुत्ते बिल्ली का इलाज कराते हैं तो वहाँ पर 10 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा गर्भ परीक्षण निःशुल्क है, बधियाकरण निःशुल्क है, और ये जो मैं बात कर रहा था सेक्स सीमेन की, ये तो बाहर में लोग इसके लिए 1500 या 700 800 रुपये शुल्क देकर इसका सेवा लेते हैं प्राइवेट पे, पर सरकारी दर पर मात्र 100 रुपये में ये सेक्स सीमेन का उपयोग किया जाता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मान ली कोनो पशु बीमार हो जाता, कोई कुछ पशुपालन के लिए बीमार हो जाता, तो जिसन की आप बताओ नहीं कि अपनी नज़दीकी चिकित्सक भाई उनके यहाँ जाए के है, का कोनो ऐसन भी योजना या कोनो आप जो ऐप का बात करते नहीं है वैसन कोनो सुविधा है का, जो ना
0: जी
1: से कि
0: बिल्कुल
1: डॉक्टर साहब उनके घर पे भी बुलावल जा सके?
0: जी जी बिल्कुल। अभी हमारे विभाग में हर पशु चिकित्सा अधिकारी को एक बहुउद्देश्य सचल पशु चिकित्सा वाहन दी गई है,
1: अच्छा।
0: और जिसमें दवाएं उपलब्ध हैं, और पशु चिकित्सक स्वयं उस वाहन के माध्यम से पशुपालक के घर जाकर वहां पर शिविर लगाकर या जो भी आवश्यक दवा सामग्री है वहां पर उनका वितरित करते हैं और उनका इलाज करते हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा मोबाइल वेटनरी यूनिट,
1: अच्छा।
0: ये एक तरह का एम्बुलेंस है जिसे कि आपातकालीन सेवाएं पशुपालक को दी जाती है। अगर कोई भी पशुपालक के पशु बीमार है या गंभीर स्थिति में है और वो काफ़ी पशु चिकित्सालय से काफ़ी दूरस्थ जगह पर स्थित है, तो वो 1962 नंबर पर, टोल फ्री नंबर है ये, 1962 नंबर पर ये कॉल करके आप अपनी समस्या का ब्यौरा दे सकते हैं, और कुछ ही घंटों में पशु चिकित्सक पूरी टीम के साथ उस एम्बुलेंस के माध्यम से पशुपालक के द्वार पहुंचेंगे और पशु का इलाज करते हैं।
1: तो जो ना आप नंबर बताए नहीं है टोल फ्री
0: जी, ये
1: नंबर,
0: 1962 टोल फ्री नंबर है।
1: तो ये पर कबू काल का कल जैसा
0: जी
1: केला या
0: जी
1: कर
0: ये
1: कोनो
0: इस
1: समय
0: पर
1: निर्धारण है?
0: आपातकालीन सेवाएं जो होती हैं ये सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक उपलब्ध है,
1: अच्छा।
0: और इस पर आप कभी भी सेवाएं ले सकते हैं। क्योंकि ये प्रदेश भर से इसमें कॉल जाती हैं तो थोड़ा सा समय लगता है, तो पशुपालक को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, हो सकता है 5 मिनट या 10 मिनट का समय लगे, लेकिन कॉल लगती जरूर है और पशु चिकित्सक अवश्य जाते हैं।
1: अच्छा, सरकार द्वारा कोनो ऐसन भी योजना है जो अगर मान ली पशुपालक भाई लोग पशुपालन कैले हों लोग, तो लोग अगर दूध बेचल चाहत हों या उसे और कोनो फायदा लिहल चाहत हों, तो उनमें ओकरी बदे का का सुविधा है ये बारे में
0: इस
1: बताएं?
0: समय देखिए सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है नंद बाबा दुग्ध मिशन। ये द नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत कई सारी योजनाएं हैं। इसमें पशुपालक 2 पशु से लेकर 25 पशु तक का एक डेयरी खोल सकता है। अब जैसे एक माननीय मुख्यमंत्री गौ संवर्धन योजना के अंतर्गत कोई भी पशुपालक उत्तर प्रदेश के राज्य से बाहर, जैसे आप पंजाब हरियाणा से, 2 स्वदेशी नस्ल की गाय का क्रय कर सकते हैं। इसकी जो कुल लागत है ये 2 लाख रुपए की है, और स्थलीय सत्यापन होने के पश्चात इसमें 40% का अनुदान मिलता है, यानी कि 80,000 रुपये वापस हो जाती है। तो मात्र 2 पशु जैसे साहिवाल हुई या गिर नस्ल की गाय हुई, थरपारकर हरियाणा, गंगा तेरी, ये स्वदेशी नस्ल के गाय के संवर्धन के लिए ये योजना बनाई गई है। इसके अलावा हमारे पास अभी कृषक समृद्धि, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना एवं मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना भी संचालित हो रही है। जैसे मिनी की बात करें तो इसमें पशुपालक 10 स्वदेशी नस्ल की गाय के साथ एक अच्छा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और ये इसकी कुल लागत है 23,60,000 की एक यूनिट है।
1: अच्छा
0: इसमें 50% का अनुदान है, यानी 11,80,000 इसमें छूट मिलती है। और जो शेष रकम है इसका कुल लागत का जो 15% है ये लाभार्थी का अंश होता है, और 35% जो है ये बैंक ऋण से ले सकते हैं।
1: अगर ये योजना के लोग कल चाहत हों
0: जी
1: तो एक बदे कोनो रजिस्ट्रेशन या
0: जी इसके आवेदन के लिए आप पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें।

0: जो ब्लॉक स्तरीय पशु चिकित्सालय है वहाँ के पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, और या फिर ऑनलाइन माध्यम से भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। जी
1: डॉक्टर साहब, जैसे अपने गांव गिराव में देखे कि मिलेला कि भाई कुछ कृषक भाई लोग थोड़ा कह जाओ कि आर्थिक रूप से कमजोर हुआ, थोड़ा गरीब हुआ, तो उन लोगन बदे भी कोनो सरकार का योजना है का?
0: हाँ, देखिए ऐसे पशुपालक जो बैंक ऋण सस्ते दर पर लेना चाहते हैं, उनके लिए एक पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना है।
1: अच्छा
0: इसके अंतर्गत कोई भी पशु पालक दो दुधारू गोवंश पर 1,60,000 तक बैंक ऋण ले सकता है, और इसके लिए मात्र 4% ब्याज बैंक ऋण द्वारा उपलब्ध की जाती है। और अगर ये 3 लाख तक की लिमिट ये पशुपालक इसको अपने क्रेडिट पर बढ़ा सकता है।
1: अच्छा तो
0: जी
1: एकरा बदे का जो नजदीकी डॉक्टर लोग हों
0: जी
1: उनसे
0: इसके लिए
1: मुलाकात
0: भी
1: करे कोई?
0: आपको पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करेंगे, और बैंक से जो संबंधित बैंक मैनेजर हैं जिनसे आप ऋण लेना चाहते हैं, उनसे एक सहमति पत्र लेकर पशु चिकित्सा अधिकारी को दें, और वो एक आवेदन करके एक नियमबद्ध तरीके से वो जिले पे जाता है पहले पशु मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में, फिर वहाँ से वो अनुमोदित होकर LDM के माध्यम से संबंधित बैंक मैनेजर में आते हैं। इसके लिए भी फिर मैं वही कहना चाहूँगा कि पशुओं के कान में वो टैग लगा होना जरूरी है, क्योंकि बैंक लोन के लिए पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निर्गत किए जाते हैं, और जब तक कि पशु का कान में टैग न लगा हो, पंजीकृत न हो, और उसका पशुधन ऐप पर अगर वो रजिस्टर्ड न हो, तो उसको लोन की सुविधा नहीं मिलेगी।
1: अच्छा, सरकार द्वारा कोनो ऐसन भी योजना है जैसे कोनो गांव में या कहे परिवार में कुछ बच्चा कुपोषित हो जाते हैं
0: जी
1: या
0: जी
1: कोई लोग भी कुपोषित हो जाते
0: जी
1: हैं, तो
0: जी
1: उन लोगों बदे भी कोनो सरकार अपनी योजना चलाओ था
0: जी
1: का?
0: जी जी देखिए, इसके लिए सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में अस्थायी गोआश्रय स्थल खोले गए हैं, बृहद गो संरक्षण केंद्र है जहाँ पर आवारा पशु को संरक्षित करके रखा जाता है। तो इन आवारा पशुओं में भी कुछ ऐसे पशु निकल जाते हैं जो दुधारू होते हैं, जो कम दूध देते हैं, जो देसी नस्ल की गाय है। अब मान लीजिए कोई पशुपालक उसको भ्रमवश छोड़ दिया है, पर वो गौशाले में जाकर वो अच्छा दूध देने लगी है, तो ऐसे गोवंश को हम लोग पोषण मिशन के तहत सैम परिवार जो होते हैं उनको ये हम लोग सुपुर्द करते हैं,
1: अच्छा
0: और इसके बदले में सरकार द्वारा प्रति पशु प्रतिदिन 50 रुपये के दर से ये धनराशि उस पशुपालक को उपलब्ध कराते हैं।
1: अच्छा
0: यानी कि एक व्यक्ति अगर 4 पशु को गोद लेता है, जैसे कि एक और योजना है इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना,
1: अच्छा
0: इसके अंतर्गत कोई भी पशुपालक गौआश्रय स्थल से 4 पशु को गोद ले सकता है,
1: अच्छा
0: और इसके लिए सरकार उसे 50 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से DBT के माध्यम से उनके खाते में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यानी कि एक व्यक्ति अगर 4 पशु लेता है तो महीने के अंत में उसे 6,000 रुपये की राशि मिलती है उस पशु के भरण पोषण के लिए।
1: तो ये जो आप पशु बताओ थे ये कहाँ मिली है पशु लोगन
0: ये
1: के?
0: पशु गोआश्रय स्थल पे उपलब्ध मिलते हैं, जो भी गोआश्रय स्थल हैं, जो अस्थायी अस्थायी गोआश्रय स्थल हैं या बृहद गो संरक्षण केंद्र हैं, ये यहाँ पर जो भी पशु हैं इनका आप चयन कर सकते हैं पशुपालक अपने स्तर से।
1: अच्छा, अब मान लें कि अगर पशुपालन के संगे संगे कुछ लोग बकरी या भेड़ पालन भी कर चाहते हो, तो
0: जी
1: ये बते भी कोनो योजना है का?
0: जी बकरी पालन और सूकर पालन के लिए भी, भेड़ पालन के लिए भी कई कई सारी योजनाएं हैं। एक
1: काका
0: हमारे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, इसके अंतर्गत जितनी भी योजनाएं हैं इसमें सरकार द्वारा 50% अनुदान दी जाती है, और इसके साथ साथ में इस समय सूकर पालन के लिए देखिए जहां पर राज्य सरकार द्वारा 90% राज्यांश है और लाभार्थी का मात्र 10% राज्यांश है, इसकी एक यूनिट की कुल लागत 1,47,000 है, और इसमें जो राज्यांश 90% की बात कर रहे हैं तो ये 1,32,660 रुपये ये सरकार की तरफ से अनुदान है। लाभार्थी को केवल अपने स्तर से 14,740 रुपये ही लगाना पड़ता है। तो ये अनुदान संख्या 83 के अधीन विशेष घटक योजना 11 सूकर पालन की योजना है ये। तो इसके ऐसे भी कर ये भी है, और इसके तहत में जो बकरी पालन है या फिर भेड़ पालन है इसके लिए भी 50% अनुदान मिलते हैं, जिसे पशुपालक ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन कर सकते हैं।
1: अच्छा, तो मतलब कि अगर कोई के पशुपालन या बकरी पालन,
0: जी
1: भेड़ पालन या सुकर
0: इसके
1: पालन
0: साथ
1: करे
0: ही
1: के है?
0: कुक्कुट पालन जो मुर्गी पालन होती है
1: अच्छा
0: उसमें खासकर जो अनुसूचित जाति के जो निर्बल वर्ग की जो महिला होते हैं या दिव्यांग जन हैं उनको वरीयता देते हुए एक बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम संचालित की जाती है, जिसके अंतर्गत इन्हें 3,000 की लागत की है ना ये एक 50 चूजे इनको उपलब्ध कराई जाती है, और इसके साथ में इन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, और चूजों के साथ में इन्हें स्टार्टर राशन और कुछ जो आवश्यक दवाएं हैं

0: वो भी उपलब्ध कराई जाती है। जी
1: तो मतलब कि ये तरह से हमारे किसान भैया लोग अगर पशुपालन करत हों
0: जी
1: या कैले हों तो वो लोग सरकारी सुविधा का लाभ उठा सके ना। तो डॉक्टर संतोष गिरी जी, आप हमने के कार्यक्रम कृषि जगत में नहीं एक बदे बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखियो
0: शुद्ध
2: भैया,
0: भैया,
2: बड़ा ध्यान लगा के सुनत रहला है भाई।
0: हाँ
2: जानकारी तो ले लेला ना, हमके पंच भैया भी सुन ले हुई हैं, तो भाई जानकारी मिलबे कैलो ना।
0: हाँ भैया जी,
2: और अगर जौने हिसाब से बताऊं ना, अगर दुई कदम बढ़ के आगे अगर ये सब सुविधा का लाभ लेत हुआ ना, तो भाई निश्चित रूप से देखा है पशुपालन में भी कामयाबी बढ़िया मिल सकेले।
0: काहे भैया देखा, हमारे सरकार एके प्रोत्साहन भी देत बा।
2: भाई हर स्तर से हर वर्ग बदे के ये जैसन बा, पैसा का कमी बात ओकरे बदे समझ ला कि तोहा कर्ज भी मिल
0: भाई
2: जात बा।
0: देखा,
2: हैं
0: दुयो दुयो ठे चौवा बदे बा सुविधा, आ जेकर व्यापक पैमाने पर करे बा ओहो बदे बा।
2: बिल्कुल, तो भाई हम तो अब एकरे साथे यह समझ ला निवेदन भी करब कि बढ़ करके इस जानकारी का लाभ उठावे, है ना। तो हे बिरजू
0: ये भैया
2: भैया,
0: देखा, अपने पंचायती में जब ले गीत गौनाई ना होले ना तब न।
2: अरे काहे न भाई, हमको इतना ध्यान लगाए कि सुनला है जब बत कही, है ना, तो हम कही कि मन मनसायन बिना तो समझ ला कि अधूरा रहला अपन पंचायत
0: देखा पंच लोग एकदम जोहत हैं भैया
2: जोहत
0: बैठ
2: हुई
0: के।
2: है, तो हम कही कि ढेर जोहा के जरूरत ना हो। महुआ बनर्जी बहनी के दिखाई विकास गीत हो, पंच सुने आनंद ले, तुहु ध्यान से सुना आनंद ला।
0: काहे भैया मनो खलिये रहे जा एकदम।

0: सिद्धू भैया देखा
1: हरिया
0: भैया।
1: चुनरी रंगाए दे। हे देखा महुआ बनर्जी बहनी कहीं गौ नहीं रहा
0: विकास
1: हो,
0: गीत रहे भैया,
1: खूब हरियरी हो गई अपने पंचायती में भी।
0: खूब
1: हाँ
0: खूब खूब
1: और हम
0: भैया।
1: कहीं चल चलावत काल जोन कार्यक्रम अपने पंच भैया लोगों के सुनोबा न बताए दो के।
0: तो देखा भैया, बिहान 6:05 पर खेती के बातें में विषय रही भिंडी की खेती। आइए विषय पर जानकारी दें दिनेश कुमार सिंह भैया।
1: असाजी के
0: असाजी के भैया 6:30 पर कृषि जगत में अपने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं के बारे में विनोद कुमार यादव से दिलीप यादव को बातचीत है, पंच लोग सुने
1: भाई
0: हैं।
1: नगद का दिखाई हो योजना के बारे में बात कही भाई है।
0: बहुत बहुत भैया।
1: तो हम कही कि अभी एक साथे चला के बेला हो तो पंच भैया लोगन से आज्ञा लेवल जाए। तो
0: हाँ तब
1: पंचो
0: भैया पंचो राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना फिल्म गीत का गीत। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और स्वर था मोहम्मद रफी का।

अभी आपने भरत ब्यास का लिखा गीत सुना, जिसे संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आवाज़ थी लता मंगेशकर की और फिल्म थी संत ज्ञानेश्वर।

अभी आपने सुना फिल्म गजल का गीत। आवाज थी लता मंगेशकर की। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए जान लेते हैं खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार साहनी देवी, पत्नी राधेश्याम, निवासी बिंदपुरवा थाना अहरौरा मिर्जापुर से दिनांक 26/2/2026 से लापता हैं। इनके संबंध में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। कद 4'5", उम्र लगभग 32 वर्ष, रंग गोरा और इनका शरीर मोटा है। जिस दिन ये घर से गायब हुई उस वक्त इन्होंने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। किसी भी व्यक्ति को यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने नजदीकी थाने या इस पते पर सूचित करें। पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर। कोई भी व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 106 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अयोध्या दान प्रकरण पर कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। श्रीराम मंदिर दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी, प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशुरा पर आज गमगीन माहौल में दफन किए गए ताजिए इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को किया गया याद। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान मामले में पहली बार एफआईआर दर्ज होने के बाद कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई है। देवरिया में 465 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो भुक्त भोगी होगा।
1: जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने देवरिया में विकास की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश का नौजवान जो पहले नौकरी के लिए पलायन करता था, आज वो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित माहौल के चलते निवेश आ रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को आज स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र

0: ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को कल गिरफ्तार किया था। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित जांच दल एसआईटी की सिफारिश के बाद ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज कराई थी। एफआईआर में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। एसआईटी मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है, जिसके बाद कल ये मामला दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं।
1: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
0: रुस्तमपुर रोड पर स्थित ये आधुनिक अस्पताल मरीजों को कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और ट्रांसप्लांट जैसी जटिल बीमारियों के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी तथा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने वाले आदेश पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव सम्पन्न हो जाने चाहिए। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। याचिका में राज्य सरकार के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन आदेशों को चुनौती दी गई है जिसके तहत यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) का हवाला देकर चुनाव टाल दिए गए और प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
2: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संयुक्त राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 500 पदों पर भर्ती के लिए 27 जुलाई तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किए जा सकेंगे, जबकि आवेदन पत्र में संशोधन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने सोलर रूफ टॉप स्थापना में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। जून 2026 में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 6 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का लाभ दिया जा चुका है। यूपी नेडा के डायरेक्टर रविन्दर सिंह ने बताया कि देश में कुल सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17% है और ये देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा का जुलूस

0: आज प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में गमगीन माहौल में निकाला जा रहा है। जगह जगह मजलिसों का आयोजन भी किया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के लोग घरों में रखे ताजियों को कर्बला में ले जाकर दफन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: सुबह से ही लोग ताजियों को जुलूस की शक्ल में कर्बला तक ले जा रहे हैं और दफन कर रहे हैं। जुलूस में लोग नौहा फानी और मातम करते हुए चल रहे हैं। लखनऊ की तालकटोरा की कर्बला में लाखों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर इमाम को पुरसा दिया। बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित फूल कटोरा की कर्बला में सुन्नी समुदाय द्वारा ताजियों को जुलूस के रूप में ले जाकर दफन किया जा रहा है। यह सिलसिला देर रात तक चलेगा। प्रदेश सहित पूरे लखनऊ शहर में विभिन्न कर्बलाओं के आसपास सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। जुलूस मार्गों पर पीएसी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। अब से कुछ देर बाद रात में 8:30 बजे लखनऊ के ऐतिहासिक शाम गरीबा मजलिस उफ्रामाप इमामबाड़े में होगी, जिसे मौलाना कल्बे जव्वाद संबोधित करेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, हमीरपुर सहित विभिन्न जनपदों में मुहर्रम का जुलूस अकीदत के साथ निकालकर कर्बला में ताजियों को दफन किया गया। उधर एटा के अलीगंज कस्बे में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। प्रदेश में आगामी 2 दिनों तक गर्मी का सिलसिला अभी जारी रहेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले 4 दिनों में मॉनसून प्रदेश के कई हिस्सों तक पहुंचेगा। इसकी शुरुआत पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया और आसपास के जिलों से होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 106 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अयोध्या दान प्रकरण पर कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। श्रीराम मंदिर के दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी। प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा पर आज गमगीन माहौल में दफन किए गए ताजिए इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को किया गया याद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
3: मिडवेव 241.5 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम रसरंग।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना फिल्म गोरा और काला का गीत, आवाज़ लता मंगेशकर और मुकेश की।

प्रेम रोग, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत, आवाज़ लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए आपको सुनाते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत।

राम तेरी गंगा मैली। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना, आवाज़ लता मंगेशकर की, शब्द रचना हसरत जयपुरी के थे और धुन तैयार की थी रविंद्र जैन ने। यह है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

मोहम्मद रफ़ी की गाय फिल्म आरती के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत।

पर्दे में क्या छुपा है अल्लाह जानता है। आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में हमारे आज से कलाकार थे जगजीत सिंह और लता मंगेशकर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम रसमाधुरी।

आर डी वर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने आनंद बख्शी का लिखा गीत सुना। आवाजें थीं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, और फिल्म थी प्रयाधन।

अभी आपने इंदेवर का लिखा गीत सुना। धुन तैयार की थी कल्याण जी आनंद जी ने, आवाजी थे लता मंगेशकर और मुकेश कुमार की, और फिल्म थी पारस।

अभी आपने फिल्म पाकीज़ा का गीत सुना। नगमा निगार थे मजरूह सुल्तानपुरी और मौसिकार थे गुलाम मुस्तफ़ा। आवाज़ थी लता मंगेशकर की।

ये दर्द भरा गीत लिखा था साहिर लुधवानी ने, और इस दर्द को धुन में पिरोया था रवि ने। आवाज़ लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम था नीलकमल।

अभी आपने सुना फिल्म राजकुमार का गीत। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की, शब्द रचना हसरत जयपुरी के थे और संगीत शंकर जयकिशन का। और यह है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: किशोर कुमार गाए फिल्म रोटी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम रसमाधुरी ही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
2: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा

0: कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमरीका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमरीका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा

0: कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। US ओपन बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदांबी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की टोंग सियू टोंग को हराया, तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को

0: Before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah launches three-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaigns. Centre to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximise benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends two Air Force planes with emergency relief material. US and Iran agree to establish direct military communication channel to reduce risk of further conflict, says US Vice President J.D. Vance. And in US Open badminton, India's Ronak Chahan stuns top seed Chou Tin Shen of Chinese Taipei to enter quarterfinals of men's singles. Kidambi Srikanth and three women shuttlers also reach the quarters. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वजीर दाखिला अमित शाह ने मंशियात के कंट्रोल से मुतालिक सहसाला विजन दस्तावेज का आगाज किया। उन्होंने मंशियात मुखालिफ मुहिम को और मुस्तहकम करने के लिए बेहतर तालमेल और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। मरकज भारत बरतानिया तजारती समझौते के फवायद को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की गरज से मुल्क भर में 1,000 मुशावरती अफराद तैनात और तजारती पोर्टल को अपग्रेड करेगा। वेनेजुएला के जलजलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 589 हो गई है। भारत ने हंगामी राहती साजो सामान के साथ भारतीय फजाइया के दो जहाज रवाना किए हैं। अमरीका और ईरान ने मजीद किसी जंग के खतरे को कम करने की गरज से बराह रास्त फौजी मवासिलाती चैनल कायम करने से इत्तेफाक किया है। जर्मनी में आईएसएसएफ जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज सोने के 7 तमगों समेत 24 तमगों के साथ सरे फहरिस्त रहे। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत के रौनक चौहान चेन्नई ताइपे के आला दर्जे के खिलाड़ी चाउ टीएन चेन को हराकर मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। किदांबी श्रीकांत और 3 खवातीन बैडमिंटन खिलाड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर दाखिला अमित शाह ने मंशियात से मुक्त भारत के विजन को हासिल करने के लिए आज एक तफसीली लाहे अमल पेश किया। मंशियात के कंट्रोल की ब्यूरो के जरिए मुनक़िदा एक मीटिंग के दौरान वजीर दाखिला ने 2026 से 2029 तक के लिए मंशियात की कंट्रोल से मुतालिक एक विजन दस्तावेज का आगाज किया। इससे कबल नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं आला सतही मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने ये कहते हुए मंशियात के खिलाफ एक मुत्तहदा लड़ाई पर जोर दिया कि मंशियात की लानत से कौमी सलामती, समाजी इस्तेहकाम, इक्तसादी मफादात और नौजवानों और मुल्क के मुस्तकबिल को खतरा लाहक है। उन्होंने रूहानी लीडरों, नौजवानों और माओं से जोर देकर कहा कि इस लड़ाई को जीतने के लिए वो सब एक वाहिद प्लेटफॉर्म पर यकजा हों।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा, युवाओं को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: वजीर दाखिला ने एक ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाइट का भी आगाज किया, जिसके तहत तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए मालियत की 2,09,500 किलोग्राम जब्त शुदा नशावर मादों को जाया किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान अवामी शिरकत से एक अवाम उन्नास की तहरीक बन गया है। वजीर आजम मोदी ने यह बात समाजी इंसाफ और तफवीज इख्तियारात के वजीर मुमलिकत बी.एल. वर्मा का एक मजमून शेयर करते हुए कही, जो नशे से मुक्त भारत की तामीर की अहमियत पर तहरीर किया गया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने नशे से मुक्त भारत और विकसित भारत बनाने के मिशन में शामिल होने के लिए हर एक शहरी पर जोर दिया। जनाब वर्मा ने अपने मजमून में तहरीर किया है कि हुकूमत मंशियात की लत को एक हसास मामला समझती है, जो भारत के नौजवानों के मुस्तकबिल और मुल्क की तरक्की से ताल्लुक रखता है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने अद्वियात से मुतालिक जाबते 1945 में

या उन्होंने मनशियात मुखालिफ मुहिम को और मुस्तहकम करने के लिए बेहतर तालमेल और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। मरकज भारत बरतानिया तजारती समझौते के फवायद को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की गरज से मुल्क भर में 1000 मुशावरती अफराद तैनात और तजारती पोर्टल को अपग्रेड करेगा। वेनेजुएला के जलजलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 589 हो गई है। भारत ने हंगामी राहती साजो सामान के साथ भारतीय फजाइया के 2 जहाज रवाना किए हैं। अमरीका और ईरान ने मजीद किसी जंग के खतरे को कम करने की गरज से बराह रास्त फौजी मवासिलाती चैनल कायम करने से इतफाक किया है। जर्मनी में ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज सोने के 7 तमगों समेत 24 तमगों के साथ सरे फहरिस्त रहे। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच, डीआरएम 1243 किलोहर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों गजलों कार्यक्रम अंजुमन। अंजुमन सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।

जब वो मेरे करीब से हंसकर गुजर गए, कुछ खास दोस्तों के चेहरे उतर गए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंजुमन।

मेरा महबूब हर वक्त नया लगता है, तूने शायद मेरे महबूब को देखा ही नहीं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंजुमन, और यह है अंजुमन की अंतिम प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंजुमन। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक पत्रकार कार्यक्रम मंजूषा।

0: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम मंजूषा के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे वार्ता। विषय है हिंदी भाषा का वैश्वीकरण और चुनौतियाँ। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सुशील कुमार सिंह। साथ ही आप सुनेंगे अबू सामह की रचनाएं। तो शुरुआत करते हैं हिंदी पत्रिका कार्यक्रम मंजूषा की इस वार्ता के साथ।
1: हम जानते हैं कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कृति, अस्मिता और राष्ट्र की आत्मा होती है। 21वीं सदी के वैश्वीकरण के दौर में जहां संपूर्ण विश्व एक वैश्विक गांव में परिवर्तित हो रहा है, हिंदी भाषा ने भी अपनी सीमाओं को लांघकर वैश्विक फलक पर अपनी एक सशक्त और विशिष्ट पहचान बनाई है। भारतीय डायस्पोरा, बॉलीवुड, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और डिजिटल क्रांति के कारण आज हिंदी न केवल भारत की राजभाषा है बल्कि विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में उभरी है। हिंदी भाषा का वैश्वीकरण जानने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुनिया भर के देश, अर्थव्यवस्थाएं, समाज व संस्कृतियां आपस में जुड़ती हैं और एकीकृत होती हैं। अतः सरल शब्दों में कहें तो वैश्वीकरण का अर्थ है सीमाओं को पार कर आपस में जुड़ना। भूमंडलीकरण के इस युग में जहां विश्व एक वैश्विक गांव बन गया है, वहीं हिंदी भाषा की प्रासंगिकता और मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। फिल्मों, संगीत, साहित्य एवं भारतीय प्रवासियों के कारण हिंदी भाषा विश्व के 150 से अधिक देशों में बोली, समझी और सराही जा रही है। अब आज की हिंदी केवल भारत की ही नहीं बल्कि एक विश्व भाषा के रूप में स्थापित हो रही है। आज जहां एक तरफ देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व स्तर के सम्मेलनों में जाते हैं तो वे अपनी बात हिंदी भाषा में रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ आज इस वैश्वीकरण के युग में जिस तरह से भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है, इससे हिंदी का व्यापक फलक पर फैलने के लिए भविष्य में उम्मीद की जा रही है। वर्तमान समय में संपर्क भाषा, राष्ट्रीय भाषा व विश्व भाषा के रूप में हिंदी के विकास परशम को देखते हुए यह आशान्वित हुआ जा सकता है कि जैसे जैसे दुनिया के देश आर्थिक रूप से उभर रहे हैं, हिंदी भाषा की कद्र भी वैसे ही बढ़ती जा रही है। हम जानते हैं कि हिंदी के तमाम वैश्विक प्रश्न 1992 ईस्वी के बाद ही जुड़ते हैं। अतिचर्चित भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण ने भारतीय समाज की एकाएक दूरगामी प्रभावधर्मी परिवर्तनों के सम्मुख खड़ा कर दिया। भारत स्वयं एक बाजार के रूप में प्रस्तुत हुआ और भारत के सामने भी पूरा विश्व एक बाजार की तरह खुला पड़ा था। भूमंडलीकरण की यह वाहक बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद को हिंदी माध्यम से हम तक पहुंचाना चाहती थीं। नोबेल पुरस्कार विजेता विश्व बैंक के पूर्व अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिंगलिट्स द ऑब्जर्वर लंदन के हवाले से कहते हैं कि भूमंडलीकरण जिस कार में सवार होकर दिग्विजय के लिए निकलता है,

उसके चार पहिए हैं, निजीकरण, पूंजी बाजार का उदारीकरण, बाजार आधारित मूल्य निर्धारण और मुक्त बाजार भूमंडलीकरण। अपने मुक्त बाजार के लिए भाषा और संस्कृति को ही नहीं अपना मोहरा बनाता है, बल्कि जनमानस के भावों को भी मोहरा बनाता है। वह एक ऐसी भाषा का निर्माण करता है जो गतिशील होती है। आज इसने अपने बाजार का विस्तार करने के लिए बहुसंख्यक जनों की भाषा हिंदी को गले लगाया है। सच तो यह है कि भूमंडलीकरण ने हिंदी भाषा की ताकत को पहचान लिया है तथा हिंदी का भूमंडल पर गाना बजाना, साहित्य संस्कृति का रंग बिरंगा तराना आदि, इसे विश्व की भाषाओं में महत्वपूर्ण दर्जा दिया जा रही है। वर्तमान समय में हिंदी केवल भारतीय उपमहाद्वीप में ही नहीं, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया, मॉरिशस, चीन, जापान, कोरिया, मध्य एशिया, खाड़ी देशों, अफ्रीका, यूरोप, कनाडा तथा अमेरिका तक में हिंदी कार्यक्रम उपग्रह चैनल के जरिए प्रसारित हो रहे हैं और भारी संख्या में उनके दर्शक एवं श्रोता मिल रहे हैं। हिंदी अब नई प्रौद्योगिकी के रथ पर सवार होकर विश्वव्यापी बन रही है। उसे ईमेल, ई कॉमर्स, ई बुक, इंटरनेट, MMS एवं वेब जगत में बड़ी सहजता से पाया जा सकता है। इंटरनेट जैसे वैश्विक माध्यम के कारण हिंदी के अखबार एवं पत्रिकाएं दूसरे देशों में भी आसानी से सर्वसुलभ हो रही हैं। मीडिया ने हिंदी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज दुनिया भर में भारतीय फिल्में तथा टेलीविजन कार्यक्रम देखे जाते हैं। इन माध्यमों ने हिंदी का खूब प्रचार प्रसार किया है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को सर्वस्वीकार्य बनाने में रेडियो की भी उल्लेखनीय भूमिका रही है। आकाशवाणी ने समाचार, खेल कार्यक्रम, प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं का आंखों देखा हाल तथा किसान, मजदूरों और बाल एवं महिला कार्यक्रमों ने हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वर्तमान समय में नई तकनीकों का समाचार कक्ष में प्रवेश, ईमेल की शुरुआत तथा गीत और संगीत तथा फोन फरमाइश चैनल का चलन भी आकाशवाणी की लोकप्रियता से हिंदी भाषा को बढ़ावा मिला है। हिंदी भाषा को वैश्विक भाषा के रूप में स्थापित करने में टेलीविजन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मनोरंजन, समाचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से हिंदी ने राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू, IBM तथा ओरेकल जैसी विश्व स्तरीय कंपनियां अत्यंत व्यापक बाजार और भारी मुनाफे के देखते हुए हिंदी भाषा के प्रयोग को दिनों दिन बढ़ावा दे रही हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी के भारी भरकम दबाव के बावजूद भी हिंदी भाषा बहुत ही तीव्र गति से विश्व मन के आशा आकांक्षा की संवाहक बनने की दिशा में अग्रसर है। वर्तमान में इंटरनेट वैश्विक पहुंच रखने वाला सबसे महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यम है। इस मंच पर प्रयुक्त होने वाली भाषा को विश्व के सभी लोगों द्वारा देखा एवं पढ़ा जाना संभव है। वर्तमान संदर्भ में हिंदी ने भी इंटरनेट पर अपनी महत्वपूर्ण दस्तक दी है। आज इंटरनेट माध्यम पर हिंदी कार्यक्रमों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। इस पर हिंदी सूचनाएं एवं मनोरंजन कार्यक्रम तो मुख्य है ही, साथ ही साथ हिंदी समाचार एवं हिंदी पत्र पत्रिकाओं को देखा और पढ़ा जा सकता है। अतः आज इंटरनेट पर रखी गई हिंदी वेबसाइटें हिंदी भाषा को वैश्विक परिदृश्य में प्रचारित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। हिंदी को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित और प्रभावी भाषा के रूप में स्थापित करने में भारत सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 2026 ईस्वी में भारत सरकार की नीतियाँ हिंदी के कूटनीतिक

0: शैक्षणिक और तकनीकी प्रयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए 1.16 मिलियन डॉलर से अधिक का योगदान दिया है। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करना भी हिंदी को वैश्विक पहचान दिलाता है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा दुनिया भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में 26 से अधिक हिंदी पीठ स्थापित की गई है ताकि वहां हिंदी का अध्यापन एवं शोध हो सके, साथ ही हिंदी को एक वैश्विक पहचान भी मिल सके। इन सब के बावजूद भी हिंदी को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख भाषा के रूप में स्थापित करने हेतु कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो भाषाई, तकनीकी और सांस्कृतिक स्तरों पर हैं, जिसके कारण इसके संरक्षण, विकास एवं प्रचार प्रसार को प्रभावित करता है। आज की युवा पीढ़ी तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण के युग में पली बढ़ी है, जहां अंग्रेजी भाषा का प्रभाव अधिक बढ़ गया है। वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी का वर्चस्व है, जिससे शिक्षा, व्यापार एवं तकनीकी क्षेत्र में हिंदी पिछड़ जाती है। हिंदी को मुख्य रूप से रोजगार की भाषा के रूप में विकसित न कर पाना एक बड़ी बाधा है। डिजिटल युग में हिंदी में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, शब्दकोश और अनुवाद की कमी है, जो इसे अंग्रेजी की तुलना में कम प्रभाव बनाती है। निष्कर्षता यह कहा जा सकता है कि हिंदी का वैश्विक भविष्य उज्ज्वल है। वैश्वीकरण के दौर में हिंदी भाषा का सफर साहित्य से बाजार तक और क्षेत्रीयता से वैश्विकता तक रहा है। 2026 के परिदृश्य में हिंदी न केवल एक सांस्कृतिक सेतु है, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमता, AI और डिजिटल मीडिया में अपनी जगह बना रही है। हालांकि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में हिंदी भाषा का वैश्वीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, फिर भी चुनौतियों से घबराने की बजाय उन्हें अवसर में बदलने की जरूरत है। अतः आवश्यक है कि न केवल मनोरंजन बल्कि संवाद, शिक्षा और डिजिटल संचार के माध्यम से वैश्विक स्तर पर संवाद की भाषा बनी रहे, ताकि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध विरासत बन सके।
1: मंजूषा कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनवा रहे हैं अबू सामा की रचना।
2: मुल हराम के हवाले से, अश्शहदाए करबला के हवाले से कुछ कलाम पेश करूंगा। तो आइए हजरात, नाते नबी का मतलब पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलायजा फरमा लें। है शान निराली शाहे उम्म

0: बहुत खुश।
1: अभी आप सुन रहे थे अबू सहमा की रचनाएं। इसी के साथ संपन्न होता है साहित्य पत्रिका मंजूषा का ये अंक।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन। कलाकार हैं विदुषी डॉक्टर श्रावणी विश्वास। आज हम आपको सुनवा रहे हैं इनका सितार पर बजाया राग जोग। आपके साथ तबले पर संगत की है पंडित ललित कुमार ने।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सितार वादन। कलाकार थे विदुषी डॉक्टर श्रावणी विश्वास। आज आपने सुना इनका सितार पर बजाया राग जोग। आपके साथ तबले पर संगत की थी पंडित ललित कुमार ने। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: फैक्ट्री नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।